नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया भर के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25

0: राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा धर्म है। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति गीत।

ये है विविध भारती झरोका में। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 269 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। समय होगा 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिए हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात 8:15 से। सुबह व रात्रि 9:30 से आज के फनकार आज केंद्रित होगा गीतकार शकील बदायूनी पर।

10 बजे से पिटारा में उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्म भूषण सई पराजपई से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का, 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। चार बजे से वक्त होगा पिटारा में सेहतनामा का। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6:35 से वक्त होगा संध्या रंजन में भक्ति गीतों का। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष। रात 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल। इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त, लेखक सुरेंद्र कुमार तिवारी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। नौ बजे से लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत और 10:30 से वक्त होगा ढलती जाए रात का।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्रीराम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्रीराम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रृंखला वर्षा चौमासा की आज की यह है तीसरी कड़ी। शुभा मुद्गल हमारी जानी पहचानी प्रख्यात गायिका स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार। और आपने मेरी तारीफ तो कर दी पर मुझे भी ये कहना है कि संगीत सरिता एक बहुत बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने, मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि आज मुझे इसमें प्रस्तुति करने का अवसर दिया जा रहा है।
0: जी तो बात चल रही थी मल्हार की, शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ, और इसके बाद आज आपने कौन सी बंदिश चुनी है, किस राग को चुना है, सब कुछ बताइए।
1: मैंने आज के लिए राग गौड़ मल्हार चुना है। जी, बहुत लोकप्रिय मल्हार का प्रकार है, प्राचीन भी है और इसे विभिन्न प्रकारों से गाया जाता है, यानी खूब मतभेद है इसके विषय में।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि बिलावल थाट का है, खमाज थाट का है, इत्यादि इत्यादि। कोमल गंधार लगा के गाना चाहिए, कैसे गाना, दोनों निषाद लगने चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत अलग अलग चर्चा है। लेकिन मैंने जिन दो बंदिशों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है उनके विषय में एक और बात आपको बताना चाहूंगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं वो हमेशा ही प्राचीन होती हैं और जैसे ही किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संगीत हो तो वो एकदम 5000 साल से कम का नहीं होता। लेकिन सत्य तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग तो आज भी हैं और रचना करने वाले लोग भी आज हैं, प्रस्तुत हैं हमारे बीच में।
0: मतलब वो धारा जो रचना की है वो अविरल है, बहती जा रही है और वो विस्तृत भी होती जा रही है।
1: बिल्कुल। और उसमें अपना अपना योगदान समर्पित रूप से लोग करते जाते हैं।
0: जी।
1: तो ये जो दोनों रचनाएं चुनी हैं, एक मैंने झपताल की रचना चुनी है और एक मैंने तीन ताल की रचना चुनी है,
0: अर्थात ये वर्षा ऋतु से संबंधित ही बंदिशें हों।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गौड़ मल्हार में निबद्ध और वर्षा संबंधी साहित्य की दो रचनाएं हैं, लेकिन दो बहुत ही जाने माने वाग्यकारों की बंदिशें हैं ये। जो पहली जो बंदिश है झपताल में जो मैं गाऊं,
0: गौड़ मल्हार का जो चलन है वो भी अगर आप मतलब आरोह अवरोह और राग के बारे में थोड़ी सी पहचान जो हो।
1: जी, तो कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं, वैसे तो मैंने बताया कि अलग अलग तरह से गाया जाता है इसे, लेकिन जो मैं प्रस्तुति कर रही हूँ उसमें ये मुख्य जो इसकी स्वर संगतियां हैं वो इस प्रकार हैं। सारे गामा गामा, ये गौड़ की विशेषता।

0: ये मल्हार का टुकड़ा
1: जी।
0: माँ पदनी सादानी पा, पनी दानी सादानी पा, ये बिलावल का टुकड़ा
1: जी।

0: ये गौरमल्हार की एक शक्ल ऐसी हाँ। बनती है और ये इन बंदिशों में आपको सुनाई देगी।
1: आप झगताल में जो बंदिश गाने वाली हैं वो पहले
0: जी जो इसके बोल हैं उनसे अगर आप पूरा स्थायी अंतरा सुने तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाद्य

0: चार हैं उनकी छाप उसमें आपको मिलेगी। उमड़ घुमड़ आए कारे बदरवा, अजहू पिया नहीं आए मंदरवा, रुत बरखा में सब घर आए, आए न प्रेम रंग रंगीले पियरवा।
1: अच्छा, ये इनका तखल्लुस है
0: प्रेम रंग जी। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेम रंग के नाम से कई लोग रचना कर चुके हैं। मेरे गुरु जी पंडित रामाश्रय झा जी से पता चला कि ये बंदिश जो है ये एक बहुत जाने माने विद्वान वाग्यकार रहे स्वर्गीय पंडित डी टी जोशी जी, उनकी बंदिश है ये
1: जी
0: जो प्रस्तुत कर रही हूँ मैं।

0: शुभा जी, आप एक दूसरी भी बंदिश की बात कर रही थी कि गौड़ मल्हार में आप प्रस्तुत करने वाली हैं
1: जी,
0: तो वो रचना भी तो बताइए ना।
1: ये रचना पंडित रामाश्रय झा जी, मेरे गुरुजी, जो राम रंग के नाम से रचना करते हैं, उनकी गौड़ मल्हार की एक रचना है तीन ताल में। और इसमें वो कहते हैं कि घन घेरी आयो री माँ, गगन गरजत डर पावे, बड़ी बड़ी बूंदन बरसे, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, राम रंग मनुआ लरजे तरसे, घन घेरी आयोरी माँ
0: जी। और घन जब इस तरह से घेर घेर लेते हैं और कामिनी जो है अगर वो अकेली है तो उसका जियरा जरूर ही धड़केगा और लरजेगा मन, सुनते हैं।

श्रोता मित्रों, ये था राग गौड़ मल्हार और गौड़ मल्हार में शुभा मुद्गल जी से हमने दो बंदिशें सुनी। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

नजर देख लो इधर चूड़ियां पे तुम करो ना फिकर भूल न जाना दिल को लेकर घायल मन है जख्म जिगर जब से लड़ी तुमसे नजर हम है उधर तुम हो जिधर आओ जिगर ने मिल

रेल का डिब्बा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूं ने इसे लिखा, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे सोनी महिवाल फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, आज है गीतकार शकील बदायूनी का जन्मदिन। आज भूले बिसरे गीत उन्हीं के लिखे गीतों पर आधारित है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: ओ सैय तोरे द्वारे ओ बलम तोरे द्वारे खड़े।
1: मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म से। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हाय हाय,
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

फिल्म अमर से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। आज गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार जयदेव का जन्मदिन है। उन्हीं के गीत और संगीत से सजा था आज भूले बिसरे गीत।

मेरे महबूब, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नौशाद ने संगीत दिया था और शकील बदायूं ने इसे लिखा।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे गीत बिन बादल बरसात इस फिल्म से। लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाजों में, शकील बदायनी ने से लिखा था, हेमंत कुमार का संगीत था। अब हम है राही प्यार के की अगली पेशकश।

0: अमर ज्योति। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और ए हरिहरन की आवाजों में। जयदेव ने संगीत दिया, नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाजों में गीत, गुलजार ने इसे लिखा, जयदेव का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी

0: देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए वो उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को

महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म संडे से इस फिल्म इस गीत को अभी आप सुन रहे थे कामरान बारी और मोहम्मद अली की आवाजों में। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे लकी नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म से समीर ने इसे लिखा, अदनान सामी का म्यूजिक।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: सोचा ना था, ये था फिल्म का नाम। सोनू निगम संजीवनी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, संदेश शांडिल्य का म्यूजिक था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक और वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

0: ताब हो।
1: किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: तुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान

हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में, एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

0: गाओगे।
1: यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपरहिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। उस बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

इसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन,
2: ओ,
1: थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर
1: है।
2: मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई।
1: हाँ,
2: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था।

0: क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बंबई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नई नई आई हुई पे, हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद,
1: वाह वाह,
0: स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना, हाँ, और बात वहां तक रहेगी। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी, और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैड माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरल, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म, पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये चार फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी, सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा, जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से उधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी, मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पुणे में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता, तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे। तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो, तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी मेरी एंड दैट वाज इट, दैट वाज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा। मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं,
1: बाय।
0: और एक दिलचस्प बात यह कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं
1: जी
0: धुआं
1: जी
0: से।

0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वो पूरी दास्तान जो है अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहां चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक
0: अरे
1: तिलस्म है।
0: क्या बात है, क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला
1: जी जी गौरव अवार्ड,
0: जी।
1: उसकी बधाई भी देनी बाकी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक
0: नहीं नहीं
1: बधाई
0: कोई
1: नहीं दी,
0: बात नहीं,
1: उसकी भी
0: कोई बात
1: बधाई
0: नहीं।
1: देता
0: तो
1: हूँ
0: वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
1: वाह वाह वाह
0: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए। तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो
1: अद्भुत।
0: मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की, अच्छी अच्छी ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन
1: जी
0: नहीं लोग नहीं भूलने देते हैं, कहते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये भी
1: बिल्कुल
0: कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा सा किस्सा सुना, क्योंकि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे, जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया,
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
1: क्या
0: हाँ
1: बात है।
0: गुल आनंद भी वहां थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। हाँ और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह कह के, उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क। हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी टेलीफिल्म कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं
1: जी
0: फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये
0: और
1: कोई रियल
0: तीनों
1: लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं अब क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च
1: जी
0: डाला। अच्छा
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस

0: से, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं है, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी? कहा नहीं। मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी हवा खुश। मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया। उन्होंने कहा, फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था, वो बदल दिया और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान,
0: योगदान, एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई, और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था, कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे प्रोड्यूसर की
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई, और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहां भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वाज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ 2-3 लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ओके बाबा, ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो कह, रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को, लेकिन उसने
1: कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर, फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे हुए, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर वेन ही वॉज कन्विंस की यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी, और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और
0: बहुत,
1: वो
0: बहुत
1: आगे
0: अच्छा
1: बात करेंगे कि कैसे कथा में
0: हाँ,
1: नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे।
0: हाँ,
1: गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहाँ के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया
1: एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन।
0: बहुत सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात

0: बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
1: जी
0: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा, सुंदर
1: बिल्कुल।
0: सा
1: और
0: छोटा
1: वो
0: सा,
1: जिस तरह से
0: हाँ
1: वो किचन
0: बड़ा
1: चाय बनाते
0: टेस्टफुली
1: हैं।
0: किया हुआ। फिर शबाना का, मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया। दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल, जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
1: वाह,
0: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है। वाह, एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी
0: हाँ
1: चश्मे-ए-बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं,
0: हाँ
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी
0: हाँ
1: बनाई
0: मजाक
1: है।
0: उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि
1: जी
0: और दीप्ति मिलके।
1: जी
0: हाँ
1: वो कमाल है जिसमें एक के
0: हाँ
1: बाद एक गाने आते हैं। कभी
0: जी या
1: परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी
0: हाँ,
1: पुराने गाने चले
0: कभी
1: आते हैं,
0: जीनत
1: कभी।
0: अमान का आता
1: जी
0: है
1: जी
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या
0: रवि
1: कमाल,
0: ने
1: देवानंद
0: खुद
1: वाला तो अद्भुत
0: किया भी, उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी,
1: जी।
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने
0: मैंने
1: तो
0: तोड़ना
1: हाँ कह
0: कत,
1: दी।
0: हाँ वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या
0: का।
1: दिल, उसमें तो जो
0: हाँ
1: दीप्ति लगी
0: यस, वो बहुत अच्छा किया रहा, उसने बहुत
1: है
0: सुंदर किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया बहुत।
1: जी, ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा आ जा,
1: तीसरी
0: इसका
1: मंजिल।
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह, कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले।
0: डांस करवाए, है ना। तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब वीएचएस का जमाना था,
1: जी
0: हाँ तो वीएचएस एक मंगवाया मशीन, और वीएचएस कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया, आ, आ, आ, उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल यस यस सही श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भर आया, ऊब गया वो भी, और उसने फिर वो रोका वीएचएस मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूं, मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने

0: ऐसी हुई है और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो। मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली। तो इतनी मजे की बात होती थी।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: जी, बहुत है, बहुत
1: उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी।
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में। हाँ
1: जी जी,
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है, विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता। फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है मंगेश देसाई, तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर से, एकदम पूरा रील का रील बाहर। तो शर्म नहीं आती, कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले। फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब का, वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए, तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक, चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल, जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाली

0: किससे सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे।
1: गजब,
0: क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, फिर काम हमारा चालू हो गया। और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या, कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना,
1: गजब,
0: इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है, क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ, कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है, तो अब क्या करें। वो दोनों बहुत मायूस है, और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है ना,
1: वाह वाह
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला।
1: जी,
0: मैंने कहा हाँ, वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
1: अनाउंसमेंट
0: डबिंग
1: करवाइए।
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है वो। ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं, वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया, और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं, बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो, नो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा, और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया, और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो।
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वर ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला,
1: लिए।
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में, तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते हैं वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बात है याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए,
1: जी
0: है नहीं?
1: बिल्कुल, इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है,
0: हाँ बहुत बहुत
1: चश्मे
0: सुंदर है
1: बतूर
0: ना,
1: जी।
0: बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है, को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ,
1: जी
0: और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी
0: और वो वहां पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपनी सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी काली सी,
1: हाँ
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और
1: वाह
0: काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई है वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते
0: जी क्या बात।

0: चकित भए सगरे नगरे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
2: हाँ।
1: ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, में कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके। हाँ, और पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है। हाँ, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते। हाँ, तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल।
2: हाँ, वो अपना

0: अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या, मतलब मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की, वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, वो
1: हाँ
0: तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ, और
1: बिल्कुल
0: इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल। तो ये गाना इस
0: अच्छा,
1: इंटरव्यू में प्यार
0: क्या
1: लगावत
0: क्या
1: भी
0: सुनाओगे? ओके।
1: सुनेंगे।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है
1: हाँ,
0: वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली,
1: टाइटल
0: जिसमें
1: से।
0: वो एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा
0: हाँ
1: में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसा ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल
0: फूल।
1: दासवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परांस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी
0: हाँ
1: रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो उसमें सारे अलग
1: भी
0: अलग
1: क्या। और
0: एनिमेशंस।
1: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा की क्या बताओ
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस
1: हाँ,
0: तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है।
1: हाँ,
0: सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया।

0: बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: हाँ, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
0: कोई टकराव होता था?
1: बहुत बार बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

सवाल है वसल पर, मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाल है वसल पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाल है वसल पर उनको उदू का खौफ है इतना।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का संगीत, एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की, बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता

0: करता है।
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपने किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार। उमंग।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो टेक्स्ट, जो इबारत हमने पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे, तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हाँ, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज़ है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हाँ, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीत में सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि

जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है, या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है? कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया? ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज़ में, अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने यह भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहाँ रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहाँ आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरियां फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्म आया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें से हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्म आया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए

एकदम शांति से सुरीला सफर ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना, और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है, नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें, मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए, सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी है कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया ये, एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती है तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशोदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ानें, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली के

0: एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30वें स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ 3रे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती

0: हसन, WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल

0: का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिव कुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है SD बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: सरकार का आलम कभी इकरार का आलम
1: प्यार का आलम
0: प्यार का आलम।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
2: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय, तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आसमां के,
0: हाय हाय गुरूर इतना।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुनहली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जो आपको लगे बस कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे, वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित का हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं।
1: हाँ।
2: और इस दूध में जो जैसा आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ।
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
2: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता
1: है
2: कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है, लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
1: बिल्कुल।
2: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
2: जी।
1: वो।
2: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
3: इतने बड़े

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ,
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लोह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई, और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना कि उसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है, ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित कर हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
3: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की इस सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
4: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
5: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
4: अब हम उसे कटवा लेना।
5: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
3: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
5: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
3: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
4: इस बुड्ढे की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
5: जी,
4: ये क्या बात है?
5: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
4: पर हम तो इसे कटवाए बिना ना मानेंगे।
5: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
4: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
3: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
6: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
5: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
4: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
5: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
3: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
4: क्या बात है मनोहर सिंह?
5: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
4: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
3: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
7: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
5: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
6: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
4: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
5: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
4: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
3: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
6: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
3: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
7: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाए तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए।

0: पेड़ छोड़ दीजिए।
1: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
2: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया है। मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज?
3: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है। तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
5: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी। और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी हाँ। किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
4: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उस का व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
5: बिल्कुल।
4: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय
5: है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
4: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
5: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं.
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या
1: कि क्या
0: सीखा
1: क्या
0: ना.
1: सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता रहता है. कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए. ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है, ये हमें क्या सिखाएगा.
1: सही बात
0: कई
1: है,
0: बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें, है
1: बिल्कुल
0: ना.
1: सही कहा। और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें. और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को
1: जी
0: लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है, यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल,
0: ये तो
1: है
0: आप
1: ना।
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते. और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं. लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं. इसीलिए टाल मटोल, जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टाल मटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे.
1: बिल्कुल, टाल मटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन

0: सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था, अगर ये सोचें, और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया, या इसका
1: हाँ
0: आनंद होता क्या है,
1: बिल्कुल
0: ये भी
1: बिल्कुल
0: कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ पे
1: हाँ
0: इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौना को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
1: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छू मंतर। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
0: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा
1: हाँ
0: लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक
1: हाँ
0: टाइम
1: हाँ
0: वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
1: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वहीं उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
0: बिल्कुल उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो
1: बिल्कुल
0: नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को, हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगे और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है। प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: नए काम

बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं, एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए। यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे, लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना? तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदल

0: रहे हैं एंड्रॉयड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई, जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ये तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है,
1: जी
0: तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
1: बिल्कुल
0: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं, ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
0: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
1: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सचर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
0: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज़ यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं, और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
1: उसका
0: उसका
1: जो मसाला है
0: वो
1: जी।
0: लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है, और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: वही, हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, मेरे हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात है,
3: शुक्रिया एक बार और।
2: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
3: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
3: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
3: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
2: जी।
3: अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
2: जी,
3: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
2: जी,
3: जब तक कि अपनी जिंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
2: जी, जी।
3: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
2: जी।
3: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
2: जी।
3: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके,
2: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
3: जांच में पता
2: हो रहा है।
3: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
2: इसकी क्या वजह हो सकती है?
3: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक,
2: अच्छा,
3: जो आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है, मेरे हिसाब से तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग जाए किसी को
2: जी,
3: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं, जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर के है, तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
2: जी
3: काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं देखा है मोतिया बढ़ गया है।
2: जी
3: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
2: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
3: पक्का है
2: जी,
3: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
2: अच्छा,
3: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल है, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
2: जी,
3: लेकिन अगर आपके किसी के आंख

0: का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: नाइन्टी
1: चलता
0: नाइन 100% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी
1: जी।
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज ओके,
1: जी,
0: शी इज नाइन्टी
1: तो
0: वन
1: इतना
0: ईयर्स ऑफ एज,
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है।
0: गया, 91 ईयर्स हो गए, उनकी उम्र है उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है, इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था, ये
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है।
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, फेको इमल्सिफिकेशन हो, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर, उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल
1: असर।
0: के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है, हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी
1: जी
0: कौन करता है, ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
1: बिल्कुल
0: दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता, और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सह लेगा,
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं, और वो है नेत्रदान
0: जी,
1: हम सभी

0: को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
1: जी, बहुत ज़रूरी है
0: जी,
1: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं।
0: जी जी,
1: नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फ़ायदा होगा?
0: जी,
1: जिन लोगों की आँख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके। काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल, तो ऑनलाइन आप आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो आप, टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना आँख
0: जी जी
1: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
0: जी,
1: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
0: जी, वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम
1: जी
0: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
1: सही
0: लोग
1: है,
0: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
1: नहीं, बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी दिक्कत होती है।
0: जी,
1: उनके लिए
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है,
1: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
0: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
1: ये नॉर्मल है, आई मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी, लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो। हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं, लेकिन क्रिकेट बॉल हो कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टीटी टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है
0: जी,
1: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
0: जी
1: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह, तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना।
0: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता,
1: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज, ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
0: फैक्ट्रियां हैं
1: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
0: जी
1: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
0: बिल्कुल
1: वो हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा, अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव ग्लास
0: नहीं कर सकते लोग।
1: और एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
1: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
0: हाँ ऑफकोर्स
1: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आइज।

0: तो बहुत इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों
1: पर?
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहा है। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
0: जी
1: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं, करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
0: खतरनाक
1: जो
0: नहीं है,
1: लोग,
0: फैशन है, उसके आगे गया है। टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो।
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: ना
1: हैं?
0: ना ना ना, नो नो नो, नहीं वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
1: जी
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब
1: अच्छा
0: टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है।
1: जी जी
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, कहीं
1: जी
0: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में, पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया हो?
0: हाँ काफी टाइम होता है, काफी
1: जी
0: टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे,
1: जी
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
1: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना
1: बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, बहुत
1: जी
0: जरूरी है,
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
0: जरूर
1: से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात
0: जरूर।
1: करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आँख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: आजकल ज़्यादातर बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज़्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है।
1: तब वहाँ आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है
1: सबसे
0: उसका भी
1: ज़्यादा,
0: आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज़्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज़्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है।
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आंख को साफ कर रहा है।
0: जी
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: छींके।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी भी
0: ऊपर।
1: परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख
0: जी
1: को
0: जी
1: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने अरे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं
1: दिन में
0: निकलती।
1: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
0: हाँ,
1: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
0: ओके,
1: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
0: जी,
1: लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत
0: जाइए।
1: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए, वो डालिए,
0: हाँ
1: ये सुरमा डालिए, वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर
0: जी
1: आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था,
0: जी जी
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
0: हाँ,
1: तभी,
0: लड़कों को
1: हाँ
0: भी
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और
0: जलता
1: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी
0: जी
1: सेफ हैं लेडीज के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: जो बाहर से लगते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस
1: वहां पे लगा दिए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
0: हाँ,
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए। हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को।
0: जी,
1: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
1: सबसे
0: है।
1: नाजुक चीज है, बहुत
0: जी
1: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
0: जी
1: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजुरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता, वेरी
0: जी
1: सिंपल।
0: जी
1: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले

0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
1: जी जी और ये मुझे कहा गया है कि ये खतर योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
0: जी,
1: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
0: हाँ,
1: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
0: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
0: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
0: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
0: जी,
1: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं आप, बर्फ लगाते हैं ना
0: जी,
1: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया
0: तो
1: आप
0: कुछ
1: गिर गए, तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
0: जी।
1: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
0: जी जी
1: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है।
0: जी
1: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है,
0: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
1: सेम
0: का
1: पानी
0: है।
1: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
0: जी, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, गुलजार साहब का गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी
1: टुडे, और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था,
0: जी
1: जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं,
0: ओके
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25 दिन तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
1: हाँ,
0: उसकी बात करनी जरूरी
1: वो
0: है।
1: बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है,
0: जी
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड
0: जी
1: डायबिटीज़
0: जी
1: का।
0: जी जी
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो
0: जी
1: ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज़, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है। सरल मैं आपको बता देता हूँ, आँखों में डायबिटीज़ में मोतियाजल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं,
0: जी
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज़, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज़ शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज़ बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी
1: आप कोई भी चीज़ खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन

0: रहता है जो पैंक्रियाज में है।
1: हम
0: जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तौर। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया।
1: जी
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी। अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है।
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसके वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन प्लस टू प्लस थ्री आती है हाई डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा, पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं, नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है।
1: जी जी
0: ठीक है, इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी जी
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है।
1: जी
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी में हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है,
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी जी
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में, किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का, ब्लड निकल आता है।
1: जी,
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी।
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है,
1: जी
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो, और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है साहब
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, ये चले जाने वाली है।
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक

0: रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं,
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर सपोज

0: का बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
1: जी,
0: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये
1: जी
0: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई
1: तो
0: देंगे, सभी में
1: दिखेगा।
0: है।
1: जी,
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आके वहां पे चिपका हुआ है। तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम, वहां से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है।
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा,
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी
1: जी
0: स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली।
1: जी
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिट्स इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही
1: शुरू
0: नहीं
1: हो
0: आएगा ना,
1: जाएगा।
0: उसमें
1: जी
0: जान निकल
1: जी
0: जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसमें
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है, एक
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डीजनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
1: अच्छा,
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको ओसीटी कहते हैं, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है। तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं, उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस, ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा, एक दो में भी ठीक हो जाता है,

0: वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है,
0: आप जानते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: वापस जाइए, वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस, वो
0: वर्चुअल
1: तो
0: इमेज
1: हाँ
0: है। अरे वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब हम
1: सीधे
0: हाँ एक
1: होते
0: दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं। अच्छा,
1: हैं
0: वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती। अरे क्या यार,
1: कमाल है
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये कर
1: यहां तक
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक, उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: है यस डॉक्टर
0: क्योंकि
1: साहब, एक आखिरी सवाल है
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना,
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर
1: सेल्फ
0: डालिए।
1: मेडिकेशन इज
0: सेल्फ
1: डेंजरस।
0: मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी जी
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू, दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी,
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स पर डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी,
0: ओके। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए।
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपया करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, ये इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है, कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें।
1: जी
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन
1: नो
0: लाइफ,
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप
0: थैंक
1: राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के
0: यू।
1: बारे में आपने बातें की,
0: नहीं,
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया, और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं, तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये, तो
1: जी
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी,

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। स्वागत है आप सभी दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी में और आज का अंक आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में आज का दिन बेहद खास है। चलिए बताते हैं क्या है विशेष आज के दिन। आधुनिक हिंदी के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन 3 अगस्त 1886 को हुआ था। उन्हें कविता में खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। उनके समय के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा बोली में लिखा, जबकि उन्होंने खड़ी बोली के साथ एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने 50 वर्षों तक निरंतर काव्य सृजन किया। गुप्त जी कबीर दास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था।

लगभग 40 ग्रंथ रचे और खड़ी बोली को सरल, प्रवाहमय और सशक्त बनाया। इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, कुणाल गीत, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी तथा जय भारत। साकेत पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। वर्ष 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। मैथिली शरण गुप्त का बचपन अनोखा बीता। इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अपनी बाल मंडली के साथ वे लोक कला, लोक नाट्य, लोक संगीत में रम गए। इनके पिता जब इनसे न पढ़ने का कारण पूछते तो इनका जवाब होता कि मैं दूसरों की किताबें क्यों पढ़ूं? मैं स्वयं किताबें लिखूंगा और लोग पढ़ेंगे। बचपन में कही गई इस बात को सिद्ध होने में ज्यादा दिन नहीं लगे। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनक लता नाम से कविता रचना आरंभ कर चुके थे। उनकी सभी रचनाओं को अलग रख दें तो भारत भारती ही उनकी कीर्ति को अमर बनाने के लिए पर्याप्त थी, जिसे मुक्ति की गीता कहा गया। 1912 के भारत भारती के विषय में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं, जिस समय भारत भारती निकली उस समय लगा जैसे राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में एक तूफान आ गया, मानो राष्ट्र के प्राण इस काव्य ग्रंथ में ही समा गए हों। मैथिली शरण गुप्त ऐसे युग दृष्टा रचनाकार जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपमा दी थी, आज फिर पढ़े जाने चाहिए। उनकी जयंती पर उनकी रचनाओं को पढ़ना वास्तव में उन्हें श्रद्धांजलि तो होगी ही, हम भी मानवीय व देश के प्रति अपने सरोकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हिंदी साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान झलकते थे। मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर आज बस इतना ही।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: दोस्तों, भागम भाग वाले आज के इस दौर में हम अक्सर कुछ जरूरी नियमों को इग्नोर कर देते हैं। भागम भाग के साथ हम सड़क पर भी अपनी आतुरता और जल्दबाजी को छोड़ नहीं पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और किसी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, तो

सड़क पर संभल कर चलें, सड़क पर संभल कर वाहन चलाएं। यदि आप सभी सड़क नियमों के बारे में जागरूक रहेंगे तभी तो किसी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए आज के इस युववाणी के अंक में चर्चा करेंगे यातायात नियमों के विषय पर। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रतिवर्ष नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, जिसके माध्यम से आम जनमानस को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटना की संभावना को कम कर सकते हैं। माता पिता भी इसी चिंता में अपने बच्चों को तेज गति से वाहन चलाने से रोकते हैं कि कहीं बच्चे किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। दोस्तों आप जब भी घर से वाहन से या पैदल निकलते हैं तो आपका परिवार आपके वापस लौटने की प्रतीक्षा करता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर संभल कर चलें और अपने घर सकुशल लौटें। प्रशासन भी इस मुहिम में पूरी तरह से सहयोग करती है। लगातार वाहनों की चेकिंग, नंबर प्लेट और गाड़ी के इंश्योरेंस संबंधित जानकारी लेती रहती है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। दोस्तों आइए जानते हैं यातायात के नियमों को, जिनको अपनाकर हम अपनी व सड़क पर चल रहे दूसरे व्यक्तियों, जीवों, पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों दो पहिया वाहन या टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। चार पहिया वाहन यानी फोर व्हीलर चलाते समय आगे बैठे व्यक्ति सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन के शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग न करें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं। किसी भी तरह का मादक द्रव्य अल्कोहल का प्रयोग करके या नशे में गाड़ी न चलाएं। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में नशे में वाहन चलाने के कारण दुर्घटना की संख्या सबसे ज्यादा है। नशे में वाहन चलाते समय लोग अपनी जान के साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। और दोस्तों आप भी अपनी दोस्ती में बाइक स्कूटी पर ज्यादा लोगों को बिठा कर न चले। नियम के अनुसार दो पहिया वाहन यानी टू व्हीलर पर सिर्फ दो लोग ही बैठें। अपनी गाड़ी की गति को सामान्य रखें। गाड़ी के ब्रेक की जांच समय समय पर कराएं। तेज गति में गाड़ी चलाने से आपको वाहन रोकने और उसे नियंत्रण करने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी खराब सड़क, बारिश व अन्य कारणों से वाहन बहुत तेज फिसलती है, जिसमें नहीं चाहते हुए भी आप अपने हाथ पैर तोड़ लेते हैं। दोस्तों बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं। ऐसा करने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है। अवयस्क व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन न चलाए। वाहनों पर हूटर, सायरन व प्रेशर हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन न चलाएं। बिना बीमा के वाहन न चलाएं। गलत नंबर प्लेट के साथ गाड़ी न चलाएं। ऐसे में आपको दंड भी मिल सकता है और दुर्घटना होने पर आपकी पहचान करना मुश्किल भी हो सकता है। वाहनों पर जाति सूचक, संप्रदाय सूचक या अन्य किसी भी आपत्तिजनक शब्द या चित्र का प्रयोग न करें। और यदि आपको सड़क पर दुर्घटना में फंसे लोग दिखते हैं तो उनकी मदद अवश्य करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, वॉकमैन का प्रयोग कभी न करें। ऐसे में आपका ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना घटित हो सकती है। कहा जाता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों याद रखें, आपके घर पर आपका और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों का घर पर उनका परिवार इंतजार कर रहा है। और किसी भी तनाव या स्ट्रेस में गाड़ी न चलाएं। जो भी तनाव या स्ट्रेस है उसे घर पर ही छोड़ दें। मौज मस्ती के लिए सड़क पर वाहनों से स्टंट न करें। आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि कृपया सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करें।
यातायात नियमों का करें पालन, इस विषय पर चर्चा बस यही।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों आइए आज के इस अंक में हम चर्चा करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खेल भावना, उत्कृष्टता और वैश्विक एकता का उत्सव। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ये प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस आयोजन में 74 राष्ट्रमंडल खेल संघों के हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया और विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं बल्कि विभिन्न देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करना भी है। दोस्तों इन खेलों के माध्यम से खिलाड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, परिश्रम और टीम भावना का परिचय देते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक एकता का भी उत्सव माना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जूडो, ट्रैक साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, बाउल्स और बास्केटबॉल सहित कुल 10 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन खेलों में पैरा खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए समावेशी खेलों का संदेश दिया। दोस्तों भारत के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ने यह सिद्ध किया कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि राष्ट्रों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। ये आयोजन हमें सिखाता है कि सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। साथ ही ये प्रेरणा देता है कि खेलों के माध्यम से विश्व में शांति, मित्रता और भाईचारे की भावना को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये अंक अब यही समाप्त होता है। अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

बहनों नमस्कार। कार्यक्रम लक्ष्मी के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी अर्चना। बहनों आप सभी को हमारी तरफ से श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम श्रावण मास के पवित्र प्रथम सोमवार से कर रहे हैं। बहनों ये सावन का महीना हम सभी के मन को भोलेनाथ की आराधना के साथ शांति और भक्ति से भर देता है और साथ ही इस मौसम में होती झमाझम बारिश से गर्मी से थोड़ा राहत तो हम सभी को मिल ही जा रही है। साथ ही इस हरियाली का क्या कहना। बहनों इस मौसम की हरी भरी वादियाँ, रिमझिम बारिश और मंदिर में गूंजते मंत्र इस महीने को और भी खास बना देते हैं। इस पवित्र समय में जहाँ एक ओर कांवरिया जल लेकर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं ये रिमझिम फुहार मानो हम सभी के तन मन को तृप्त कर दे रही है। इस पवित्र महीने में हम सभी मिलकर एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम हमेशा खुद को स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें, औरों को भी खुश रहने दें। और ये तब हो सकता है जब हम किसी भी बुरी लत से खुद को दूर रखें। बहनों पता है हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम अब किसी भी प्रकार से के बुरी लत में नहीं फंसेंगे और किसी भी प्रकार के नशे से हम खुद को दूर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति ने नशा करना शुरू कर दिया है तो वो नशा छोड़ नहीं सकता,

0: बिल्कुल छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, यदि अपना आत्मविश्वास सही है, हम अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, तो हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। इसी बात पर मुझे ये बात याद आ रही है कि एक हमारे बगल की सासू माँ थी, जो कि 75 साल की थी। आपको मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सही कहानी बता रही हूँ, कि एक बार की बात है कि अभी COVID-19 आया था, हम सभी जानते हैं, उस महामारी के दौरान। तो वो उन्होंने एक प्रण लिया कि भाई, सभी लोग, बहुत सारे लोग अस्वस्थ हो रहे थे और वो बहुत सारे लोग, अपने प्राण तक उनका चला गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रण लिया कि अब से मैं जो है कि, वो पता है 75 साल की हो गई थी और उन्होंने 15-20 साल की उम्र से ही वो सुपारी, सुरती सब कुछ खाना शुरू कर चुकी थी, इस तरह के चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं नहीं खाऊंगी और मैं छोड़ दूंगी। मैं सच बता रही हूँ बहनों, यकीन मानिए कि उन्होंने धीरे धीरे लौंग खाना शुरू किया और धीरे धीरे 3 से 4 महीनों में उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, बिना किसी दवा के, बिना किसी उसके। ये बहुत बड़ी बात है बहनों की। देखिए, एक इस अवस्था में यदि आदमी का इतना ज़्यादा आत्मविश्वास दृढ़ हो और वो छोड़ सकता है चीज़ों को, तो हम आप तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, यदि हम चाह जाएँ तो बहनों देखिए, यदि दृढ़ कमिटमेंट हो, मत बहुत अच्छा इरादा हो, हम अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हों, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो कि हम उसको छोड़ ना सके। और आज वो ऐसी ये स्थिति है कि यदि उनके सामने इन सब चीज़ों को रखा भी जाता है ना, तो बिल्कुल मना कर देती, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। तो यानी इच्छा शक्ति का दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो देखिए बहनो, हम सभी जानते हैं कि नशा एक जहर है जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य और समाज को भी बर्बाद कर देता है, और यदि इसे हमें छोड़ना है या किसी को छुड़वाना है, तो सबसे पहले उसके दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। और यदि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो हम नशे की लत को भी छोड़ सकते हैं, या फिर कोई भी बुरी लत हो हमारे अंदर, या फिर इसे कुछ भी हो, उसको हम छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अब तो आदत हो गई, अब तो छूटेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, जो हम चाह ले वो कर सकते हैं। और मानो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जीवन जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान होता नहीं बहनों। जीवन है तो जाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव भी आएंगे, पर ये जाहिर सी बात है, हम सभी की ज़िंदगी में आ भी रहे हैं, इसलिए हमें इससे घबराने तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि घबराने के बजाय हमें इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। बहनों बताएं, जीवन की हर समस्या हमें और मजबूत बना देती है, और यदि हम हार न माने तो जीवन की हर समस्या का समाधान हम बहुत आसानी से करते हैं कर सकते हैं, चाहे वे समस्या सामाजिक हो, पारिवारिक हो या फिर आर्थिक। बस आवश्यकता है तो एक चीज की, कि संबंधों की मर्यादा को हम बनाए रखें, और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें। क्योंकि बहनों, हम सभी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता ही है, और यदि खोए हुए के बारे में ही हम यदि सोचते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आज को तो खराब करेंगे ही, साथ ही साथ हमारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए बहनों, हम क्या कर रहे हैं या फिर क्या करने जा रहे हैं, इन सब बातों पर हमें बहुत सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का लिया हुआ एक गलत निर्णय हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। ठीक उसी तरह से, यदि हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सही ढंग से ना सोचें, तो भी उनका भविष्य बिगड़ सकता है। और ख़ास तौर से जो शादी ब्याह जैसी चीज़ें हैं ना, उस पर तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि यदि बच्चे करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले उनके करियर पर फोकस करें, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ये तो हम सभी जानते हैं। और ख़ास तौर से बहनों, हम सभी को बच्चों का कम उम्र में विवाह तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और पता है बहनों, कि सबसे बड़ी बात है कि यदि हम बच्चों का कम उम्र में विवाह करते हैं ना, तो उससे उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहनों, इस बारे में हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चलते इसी से संबंधित सुनते हैं एक भेंटवार्ता डॉक्टर राजेश प्रसाद जी से, जो कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। और भेंटवार्ता का शीर्षक है, कम उम्र में विवाह का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, और उनसे बातचीत कर रही हैं संजू सिंह जी। तो चलिए साथ में सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी आते हैं, जिसका बहुत महत्व होता है। वैदिक काल से यह संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचायक माना जाता है, परंतु परिवर्ती काल में इसमें अनेक बुराइयां और कुप्रथाएं

0: प्रथाएं समाविष्ट हो गई। इन विकृतियों के फलस्वरूप बेमेल विवाह और बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ, जो कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में एक घोर अभिशाप के रूप में उभर कर सामने आने लगा। बाल विवाह एक कुप्रथा है जो दुनिया के कई हिस्सों में व्याप्त है। बहुत से लोग इसे अनदेखा अनसुना करके बाल विवाह करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या होती है कि लोग ऐसा करते हैं? ये बाल विवाह हर धर्मों, हर समुदायों, हर वर्गों में है या फिर कहीं कहीं? इसके बारे में जानते हैं बाल विवाह से जुड़ी कुछ बातों को डॉक्टर राजेश प्रसाद जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में। तो डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, आपका कार्यक्रम में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम। आज जो आपने बाल विवाह का जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही सारगर्भित टॉपिक है।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: मैं आपको बताना चाहूँगा
0: जी
1: कि दुनिया में
0: जी
1: विवाह कई प्रकार के हैं।
0: जी
1: तो प्रश्न ये उठता है हमारे पास कि बाल विवाह के पहले हम लोग इसमें दो टर्मिनोलॉजी है।
0: क्या?
1: एक टर्मिनोलॉजी है बाल और दूसरा विवाह।
0: जी बिल्कुल।
1: बाल का मतलब अगर हम सेंस लिया जाए नर और नारी से,
0: जी जी,
1: बालक और बालिका। बालक और बालिका का अर्थ होता है शिशु या कम उम्र का बच्चा है। यह शब्द मुख्य रूप से छोटे नादान अवयस्क पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है।
0: जी।
1: इसका स्त्री लिंग जो रूप है वह बालिका है।
0: अच्छा।
1: जो मादा बच्चे को दर्शाता है। और इसी के साथ अगर हम विवाह की परिभाषा बताएं
0: जी,
1: तो विवाह की जो परिभाषा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो बहुत समाजशास्त्रियों ने बहुत परिभाषाएं दी हैं, लेकिन एक परिभाषा से ही हम लोग काम चला लेते हैं
0: जी,
1: कि विवाह जिसे वैवाहिक संबंध या वैवाहिक बंधन भी कहा जाता है, पति पत्नी कहलाने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त एक बंधन है, इसे हम विवाह कहते हैं
0: जी।
1: अब हम लोग बाल विवाह की बात करते हैं
0: जी।
1: तो बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसमें बच्चों का विवाह उसकी आयु से पहले कर दिया जाता है। यह प्रथा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा डालती है
0: जी।
1: तो जो बालक होता है उसकी उम्र 21 वर्ष हो और जो बालिका हो उसकी उम्र 18 वर्ष हो, इससे अगर नीचे हैं तो ये बाल विवाह निषेध के रूप में माना जाए,
0: बाल विवाह की श्रेणी में आता है जी। तो ये जानना चाहें कि आखिर ये जो बाल विवाह होते हैं इसके कारण क्या है प्रोफेसर साहब?
1: मैडम, बाल विवाह के बहुत कारण हैं।
0: जैसे
1: गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक दबाव प्रमुख जो ये कारण हैं यही है
0: जी। अच्छा, ज्यादातर तो जो बाल विवाह के प्रचलन है वो कहाँ देखने में मिलते हैं?
1: ज्यादातर बाल विवाह के प्रचलन घनी आबादी हो
0: जी,
1: आदिवासी हो, कम पढ़े लिखे लोग हो, बेरोजगारी हो, वहाँ बाल विवाह के लक्षण दिखाई देते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जो सामान्य तौर पे जो बाल विवाह में शामिल बच्चे होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है?
1: उनकी उम्र पुरुष का उम्र है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और जो महिला है उसका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विवाह एक सामाजिक संस्था है
0: जी,
1: और संस्था के साथ एक स्टेटस मिल जाता है
0: जी,
1: विवाह का
0: एक स्तर मिल जाता है,
1: एक स्तर मिल जाता, परिस्थिति प्राप्त होता है उसे,
0: बिल्कुल,
1: कि वो पति और पत्नी हो गए, लड़का लड़की थे, वहाँ पे सिंबॉलिक उनको इंटर मिला कि ये पति और पत्नी है
0: जी, एक मानक मिल गया। हाँ। कि वो एक रिश्ते में बन चुके हैं
1: जी, जी।
0: बाल विवाह तो कहते हैं कि ये कुकृत है और ये नहीं ठीक होता है और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्या परिणाम
1: इसके? दुष्परिणाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है
0: जी,
1: शिक्षा में बाधा होता है, नौकरी में बाधा होता है, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं शामिल हैं।
0: अच्छा।
1: और इतनी जब समस्याएं जब शामिल हैं तो उसके विकास में भी बाधा पहुंचेगा
0: जी, बिल्कुल। तो बाल विवाह को रोकने के लिए कानून भी बने हैं
1: जी मैडम। बाल विवाह के कानून बने हैं, क्योंकि पहले जो है बहुत कम उम्र में शादी कर दिए जाते थे, नादान बच्चे होते थे
0: जी,
1: जो जानने लायक नहीं होते थे। तो ब्रिटिश काल के समय की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के नाम से जाना जाता है, 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ।
0: अच्छा,
1: लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी
0: पहले
1: जी
0: जी,
1: जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए
0: 21
1: वर्ष कर दिया गया था। इस प्रायोजक के जो अग्रदूत थे
0: जी,
1: वो हर विलास शारदा थे।
0: अच्छा,
1: उनको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और इसे हम लोग बोलते हैं शारदा अधिनियम। यह 6 महीने बाद 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ।
0: अच्छा,
1: और केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू हो गया,
0: सभी धर्मों के लोगों पर।
1: और यह भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था
0: जी।
1: और ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कानून पारित किया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय थे
0: जी।
1: और हिंदी के साहित्य के लेखक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी परोक्ष रूप से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को कम करने में सहायक था
0: जी। प्रोफेसर साहब, अच्छा ये बताएं कि जो बाल विवाह और जबरन या जबरदस्ती विवाह है, इसमें अंतर क्या है?
1: बाल विवाह और जबरदस्ती विवाह
0: जी,
1: दोनों विवाह कानून के दायरे में आता है, दोनों कानूनी रूप से अपराध के श्रेणी में आते हैं
0: जी।
1: बाल विवाह के बाद अगर जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है
0: जी जी,
1: तो जबरदस्ती विवाह में या तो लड़का आत्महत्या कर लेता है या तो लड़की आत्महत्या कर लेता, क्योंकि वो सोचता है कि हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा
0: जी।
1: इस वजह से वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए इस तरह के विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता है
0: जी। और फिर जबरदस्ती, जब तक उसका मन ना हो विवाह के लिए, तब तक जबरदस्ती
1: नहीं करना चाहिए
0: जी। तो इसको समाप्त करने के लिए किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए प्रोफेसर साहब?
1: सबसे पहले तो जागरूकता होनी चाहिए है? और जागरूकता के साथ साथ उनको शिक्षा के माध्यम से अवगत कराना चाहिए
0: जी,
1: ताकि समस्या का समाधान हो सके
0: बिल्कुल।
1: और बाल विवाह को या जबरदस्ती विवाह को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। इकलौते अगर आप प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है,
0: कहते हैं लेकिन कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता है।
1: जी जी
0: मैं। जी, सामूहिक रूप से,
1: क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही हम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं
0: जी। अगर प्रोफेसर साहब मान ले कोई वयस्क व्यक्ति है और किसी नाबालिग बालिका से विवाह करता है, तो क्या ये भी बाल विवाह की श्रेणी में आता है?
1: जी मैम
0: जी,
1: क्योंकि विवाह का जो अधिनियम पारित किया गया था 2006 में
0: जी जी,
1: उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष हो और लड़के की उम्र
0: 21
1: वर्ष हो, इससे अगर कम है तो यह विवाह अमान्य हो जाएगी, इसको नियमानुसार शून्य मान लिया जाएगा, जो कि धारा 3 में एकदम बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है।
0: अच्छा अच्छा, जो व्यक्ति बाल विवाह कराने वाले लोग हैं, जो बाल विवाह कराने में शामिल होते हैं, उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है या फिर क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं?
1: उनके लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं
0: जी।
1: बाल विवाह अनुष्ठान पर कार्यवाही करके उसे रोकें
0: जी।
1: इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना होता है
0: जी।
1: कि ये सही में उस वर्ष को पार कर चुके हैं या उस
0: अच्छा,
1: वर्ष तक हैं
0: जी।
1: बाल विवाह को बढ़ावा देने में अपना सहयोग
0: ना दे जी।
1: बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करें
0: बिल्कुल।
1: बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाएं
0: जी।
1: सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण और आंकड़े को प्रस्तुत करें,
0: जी बिल्कुल। अच्छा, बाल विवाह को रोकने के लिए शिकायत अगर मान ले हम करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं और ये क्या कारगर साबित हो सकता है?
1: जी मैडम, बाल शोषण के खिलाफ जो शिकायत करें
0: जी
1: वो टोल फ्री नंबर है 1800102722। इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। और जो है बाल विवाह की शिकायत के नंबर्स हैं 1098,
0: जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर
1: हाँ
0: है।
1: जी 1090 और 100 नंबर पर डायल करें। शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकार

0: जारी से की जा सकती है, नजदीकी पुलिस थाने में कर सकते हैं और जिलाधिकारी से आप कर सकते हैं
1: जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, देखें एक और प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि अक्सर देखें गांव में पुरानी परंपरा भी है कि शादियां बचपन में ही हो जाती हैं और गौना 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद किया जाता है, तो क्या ये जो है कि बाल विवाह की श्रेणी में आएगा?
0: जी, यह बिल्कुल आपने बात जायज कहा, ये बाल विवाह के ही श्रेणी में आएगा।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर बच्चों का एक 18 वर्ष और 21 वर्ष के नीचे है तो वो चाहे जिस तरह से आप विवाह करते हैं वो बाल विवाह के श्रेणी में ही आएगा।
1: मतलब जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत ये बाल विवाह की श्रेणी में ही आएगा। जी प्रोफेसर साहब, देखें बड़ा ही अच्छा आपने इस विषय पर सभी श्रोताओं को जागरूक किया और अच्छी जानकारी दी। चलते चलते सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले मैडम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया
1: जी
0: और इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जिसपे हमने आपको कुछ बातें बताई
1: जी।
0: और चलते चलते मैं यही कहूंगा कि इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है और गैर जमानती है, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। ये बिल्कुल कोटेड है नियम के अनुसार
1: जी।
0: और सभी लोग जागरूक रहें, बाल विवाह को बढ़ावा न दें, मैं यही आग्रह करूंगा सभी लोगों से
1: जी। तो श्रोताओं, आप हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश प्रसाद जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में। श्रोताओं, प्रोफेसर साहब की बात से हमें ये लगा कि ये बाल विवाह समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए अभिशाप है। इस कुप्रथा को हम सबको मिलकर के खत्म करना होगा। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से पहले शादी बच्चों के जीवन की बर्बादी है, तो ऐसा ना करें और ये संकल्प लें कि बच्चों को हम खूब पढ़ाएंगे और बाल विवाह से उनका जीवन बचाएंगे। और डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, आपसे हुई इस विषय पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी हमने भेंटवार्ता सुनी। शीर्षक था कम उम्र में विवाह, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, और भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर राजेश प्रसाद जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र में, और उनसे बातचीत कर रही थी संजू सिंह जी। तो देखिए बहनों, हम सभी को भी इस चीज में जरूर आगे आना चाहिए कि जहाँ भी कम उम्र में बच्चों का विवाह हो रहा हो वहाँ के लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास करें, और यदि वो समझाने पर न माने तो फिर हम लोग कानूनी सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें अपनी बातचीत से, उन्हें सुझावों से, हर चीज़ से समझाया जाए कि देखिए ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये ठीक नहीं है कि कम उम्र में हम अपने बच्चों की शादी करें। तो बहनों देखिए, आगे हम बात करेंगे एक और ही बहुत ही अच्छे से टॉपिक पर, जिसमें है कि माँ का दूध अमृत समान। पर उससे पहले चलिए हम सभी चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से गीत को।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: मैनु, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अर्चना। और बहनों, हमने इस गीत से पहले आपसे कहा था कि हम बात करेंगे कि माँ का दूध अमृत समान इस विषय पर। तो बहनों, हमें इस माँ के दूध पर जरूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का अनमोल उपहार है जो बच्चे के संपूर्ण विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ स्तनपान से माँ और बच्चे के बीच एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जो है जुड़ाव भी होता है। तो हमें इस चीजों से बच्चों को बिल्कुल दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम माताओं की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा बहुत बीमार हो रहा है, बहुत उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इन सब चीजों से यदि हम बचे रहना चाहते हैं तो बच्चों को जन्म से 1 घंटे के अंदर में माँ का दूध अवश्य पिलवाएं, और साथ ही साथ बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं। किसी भी तरह की कोई घुट्टी पानी कुछ भी ना दें, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है और उससे बच्चे और दूध भी होता है, तो इससे बच्चे की सेहत पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चे को इस अनमोल उपहार से वंचित हम सभी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है और बच्चे के लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रकृति ने, भगवान ने दे रखा है। तो फिर हम उसे बच्चे से इसे क्यों वंचित करें। और सबसे बड़ी खास बात है बहनों की, स्तनपान कराने से माँ का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, गर्भाशय भी सही ढंग से रहता है। तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि यदि हम स्तनपान कराते हैं तो बच्चों के लिए बहुत खास होता है। तो बहनों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, और इस कार्यक्रम से जुड़ने और अपने महत्वपूर्ण सुविचार साझा करने के लिए हमें आप ईमेल कर सकती हैं, और हमारा ईमेल आईडी है grihlakshmi@gmail.com। एक बार फिर से हमारा ईमेल आईडी सुन लें, GRIHLAXMI

AIR OBRA at the rate gmail.com। बहनों हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य साझा करें और साथ ही अपना नाम और पता भी बताएं ताकि अगले कार्यक्रम में हम आपके नाम के साथ आपके सुझावों को शामिल कर सकें और आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर भी अमल करें। तो जा रही हूं बहनों इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से हम होंगे साथ साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी अर्चना का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गये। सत्र के पहला दिन आज विधानसभा के कार्यवाही के दौरान दिवंगत विधायकन के श्रद्धांजलि दिया गयी। एक बाद विधानसभा का कार्यवाही भी 11 बजे तक खातिर स्थगित कर दिया गये। सत्र से पहले मीडिया से बतियावत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहने कि पिछला 9 साल में प्रदेश के परसेप्शन के बदलने में सफलता मिलल हो। वहां के कहने कि प्रदेश के बीमारू राज्य के श्रेणी से निकाल के एगो रेवेन्यू सरप्लस राज्य बनोले में कामयाबी मिलल बा। मुख्यमंत्री सदस्य से सदन के समय का बढ़िया उपयोग कैलहू का आग्रह कैले।
1: यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है।
0: मानसून सत्र 6 अगस्त ले चली। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बिहने वित्तीय वर्ष 2026-27 को अनुपूरक बजट पेश करी है। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशन के संख्या संशोधन विधेयक 2026 आज पारित कर दियालस। यह विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशन के संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशन के संख्या 33 से बढ़ा के 37 कई लो। ई संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त हवे। यह वर्ष मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशन के संख्या 33 से बढ़ा के 37 करे बदे एगो अध्यादेश जारी कैले रहलिन। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के निर्देश देले हो कि हर सड़क पर पैदल चले वाले यात्रियन बदे उचित रूप से सीमांकित आ अतिक्रमण मुक्त जगह सुनिश्चित कर जाए।
2: न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। पीठ ने ऐसे निर्देश जारी करने को कहा जिसमें पैदल

0: यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: पवित्र सावन महीना के पहला सोमवार पर आज तड़के से भगवान शिव का पूजा अर्चना कैल जा रहा हो। प्रदेश के सज्जो प्रमुख शिव मंदिरन आज शिवालयन में ढेर संख्या में श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए लोगों के सावन महीना के पहला सोमवार पर शुभकामना देत लोक मंगल का कामना कर रहे हैं। वाराणसी में सावन महीना के पहला सोमवार के दिन श्रद्धालु आ कांवड़िया लोगों का उत्साह चरम पर बा। एगो रिपोर्ट।
2: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिव महर उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए महिलाएं बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुँच कर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही मृत्युंजय महादेव मंदिर, तिलभांडेश्वर महादेव, मार्कंडेय महादेव, केदारेश्वर महादेव, ओंकारेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ महादेव, दुर्गा कुंड स्थित शिव मंदिर तथा सारनाथ क्षेत्र के प्राचीन शिवालयों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए VIP प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: बस्ती जिला के श्री भदेश्वरनाथ मंदिर, अयोध्या का श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, गोरखपुर का महादेव झारखंडी मंदिर आ बाराबंकी का श्री लोधेश्वर महादेव धामों में आज भोरवे से श्रद्धालुओं का भारी भीड़ भगवान शिव का जलाभिषेक आ दर्शन पूजन कर रहा हो। मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 अगस्त ले कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी कर लिया हो। विभाग के मुताबिक यह इलाकन में आज व बिहने गरज चमक के साथ ही कहीं कहीं बिजलियों गिरले के आशंका बनल बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। उससे पहले खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रीना देवी, पत्नी राजदेव, निवासी ग्राम बलियरी, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 24 फरवरी 2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फीट, लगभग 5 फीट, सांवला रंग, लंबा चेहरा, पहनावा लाल रंग की समीज, सफेद रंग की लैगी तथा पैर में जूती। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से आज आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 8:20 पर लखनऊ केंद्र से आज आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा। रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। अब से कुछ देर में यानी शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 पर फिल्म संगीत और शाम 7:05 पर कार्यक्रम होगा लोक गीत का। और आज के कलाकार हैं देवदत्त त्रिपाठी। शाम 7:31 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सबरस। और रात्रि 8:30 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। और रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर से बता दें, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। ये कार्यक्रम होगा ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचम की
1: राम राम।
0: और बताओ बता सा बहन का हाल चाल बा।
1: नैना बहन देखा हाल चाल तो ठीके बा, लेकिन मौसम के देखते हुए हाल चाल के अगर देखल जाए ना तो देखा मौसम के हिसाब से अगर ना रहल जाए ना तो भाई वही हिसाब से जो हम लोगों का स्वास्थ्य बा वो थोड़ा सा प्रभावित होला। लेकिन देखा मौसम बरखा में कभी पानी बरसे लगता कभी मतलब घाम हो जात बा, लेकिन आज तो देखा दोपहरिया सवेरे घाम रहल और संझा बेरा एकदम झमाझम बरस दिलन है। अब देखा इतना में केहू भीज गए तो देखा भाई शरद खांसी जुकाम हो जात बा। तो देखा उसे बचे के खातिर हम लोगों के जरूरी बा कि अपन स्वास्थ्य का अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखल जाए।
2: सही बात है, देखा कहल जाला कि अपने साथे साथे जो अपन दुठे चट्ठे पशु चौवा रख ले बाया ओहू के स्वास्थ्य का ख्याल रखी जा। और देखा यही के साथे साथे कहल जाला ना हो कि अपन रोज लोगन की जागरूक करे बदे जागरूक करे बदे लोग रोज कोनो ना कोनो दिवस और त्योहार के रूप में मनावल जाला।
1: बिल्कुल, आज कोनो दिवस है का?
2: देखा आज दिवस है राष्ट्रीय अंगदान दिवस
1: है। अच्छा, आज देखा दिवस सोमवार है, सावन का पहला सोमवार भी है।
2: हाँ हाँ।
1: और अंगदान के बात अगर कहलू है नैना बहन तो देखा उपवास रखले से शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहला, लेकिन अब एकदम में ना उपवास रोज रोज रखे आदमी की मतलब शरीर के साथ साथ जोन भी शरीर में काम कर रहा अंग बा उहो बीमार होकर लगे
2: हो जाए।
1: और देखा जब तक शरीर स्वस्थ ना रहे तो कोनो शरीर के अंग भी हम दान ना कर सकेला। डॉक्टर साहब कह रहे ना कि कोनो चीज अगर दान करेगा तो ओकर भी स्वस्थ होकर बहुत जरूरी बा।
2: जरूरी बा तो देखा जब स्वस्थ होके के बात तो होबे के लिए जैसे कि अंगदान अब क्या है कोई लोग अपन देखा अभी कहना नहीं हम काहे करे जाए अंगदान, लेकिन देखा जब समय के हिसाब से जब जरूरत हो तो कि कर देवे की चाहिए।
1: बिल्कुल, देखा कहा जाला ना कि हम अगर भाई जिंदगी और मौत, जिंदगी तो एगो रहला कि 9 महीना बाद एगो बचवा चाहे बचिया पैदा हुई, लेकिन मृत्यु ऐसा कटु सच्चाई है नैना बहन की के कब चल जाए दुनिया से कुछ नहीं कहा जा सकेला। तो ये जो शरीर के अगर अंग बा अगर केहू के हम दे देली और ओके वो काम कर देहलस तो सोचा हम नहीं है तब्बो देखा हम जिंदा है उपरे शरीर में। तो बिल्कुल करे के चाहिए अगर हम लोगन चाहते हैं कि अपने आप के जीवित रखी अपने परिवार के साथ रही और दूसरे के खातिर खुशी बनी तो ये काम हम लोगन के करे के चाहिए। और हम लोगन के एक प्रति लोगन में जागरूकता भी लियावे के चाहिए कि चाहे नेत्रदान हो चाहे देखा कन्यादान करेला हम लोगन ना तो कितना पुण्य के काम
2: होला।
1: तो इहो देखा तरह से पुण्य के काम है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो कुछ चीजें बा जैसे कि लोग अपनी स्वेच्छा से कर दे, तो देखो स्वेच्छा का बात यह हो बा कि अपने घर परिवार के बता दे पहले से ही कि हमके

0: पनि अंगदान करेके बा।
1: बिल्कुल स्वेच्छा से भी कर देला नैना बहिन, और देखा स्वेच्छा से मतलब घर में पूछ लेहल जाए, या फिर देखा जब कह जाला ना कि अगर घर में सहमति बा तो और भी अच्छी बात,
0: अच्छी
1: घर
0: बात
1: में
0: बा।
1: और भी लोग करत हुआ तो करे के चाही। और भी शरीर के जाने के बाद अगर लोग कहना कि मरले के बाद अगर अंग दान कर ले तो अगले जन्म में आनहर पैदा हो, तो ऐसा कुछ नहीं
0: कुछ नहीं भाई, देखा अपन सोच सोच के बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो देखा ये सब चीजों की दूरी करल जाए। तो जैसे कुछ होला ना कि लोग कहलन कि मरले के बाद कैसे दान हुई, लेकिन देखा कुछ अंग ऐसा हो कि जो मरले के दान बाद भी
1: दान
0: के बाद दान कर जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखा नैना बहन हम लोग स्वस्थ रह जाये और अगर जागरूकता फैलावल जाये तो निश्चित तौर पे एकरे प्रति लोग सही जानकारी रखी है। तो हम तो ऐसा लगेला कि 10 आदमी से अगर कहल जाए तो 10 के 10 तैयार हो जाए, लेकिन सही जानकारी होकले के बाद
0: जरूर। हाँ।
1: तो भाई बिल्कुल लेके आगे भी बढ़ावल जाए, लोगों के जागरूक भी करल जाए। और देखा स्वस्थ रहे के खातिर जो बाकी कहल जाला कि जो जड़ी बूटी है उस सेहत का खजाना कहाला। और देखा जानकारी भी शामिल बा कि सेहत के खजाने का कुंजी है जड़ी बूटियां। ए विषय पे डॉक्टर अपूर्व प्रियदर्शी जो उनके चिकित्सक हुआ उनसे अपन सचिन कुमार वर्मा बात कैले हवन, तो हम तो कहते हैं देरी ना करल जाए, जानकारी के सुनल और गुनल जाए।
0: चलो सुन लेवल जाए।
2: जड़ी बूटियां और आयुर्वेद, इनसे हम सभी भली भांति परिचित हैं। मेडिकल साइंस में आज बहुत बदलाव हो चुके हैं, पर हमारा विश्वास इन पर आज भी अडिग है, क्योंकि सदियों से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने या लंबे समय तक हमें स्वस्थ रखने में ये जड़ी बूटियां कारगर रही हैं। बीमारी चाहे किसी उम्र की हो या फिर बड़ी हो या छोटी, सबका इलाज संभव है इन जड़ी बूटियों के माध्यम से। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि सेहत के खजाने की कुंजी है ये जड़ी बूटियां। तो चलिए इसी क्रम में आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अपूर्व प्रियदर्शी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: जी नमस्कार और हार्दिक धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं ये जड़ी बूटी से क्या तात्पर्य है और इन जड़ी बूटियों का जीवन में क्या महत्व है।
3: वस्तुतः जड़ी बूटी नाम से हम जिन रूढ़ शब्द में जो समझते हैं कि मेडिसिनल यूज अर्थात दवा के रूप में जिन प्लांट्स को यूज किया जाए वो जड़ी बूटी है, एक सामान्य जो रूढ़ अर्थ है। और यह सत्य भी है क्योंकि पौधे, हमारा आहार जो होता है, भोजन होता है, वह भी पौधे से आता है और हमारी औषधियां हैं वह भी पौधे से ही आती है।
2: जी।
3: तो पौधे जो आहार के लिए उपयुक्त हों और पौधे जो औषधि के लिए उपयुक्त हों, दोनों के गुणों में थोड़ा सा अंतर होता है।
2: जी।
3: जिन पौधों में पोटेंसी ज्यादा होती है वो औषधि वर्ग में आती है, और जो द्रव्य या जो पेड़ पौधे हमारे शरीर का पोषण स्नेह स्नेह गति से करते हैं वो आहार की श्रेणी में आते हैं।
2: बिल्कुल, मतलब औषधि यूज है तो सीधा समझे हैं वो जड़ी बूटी।
3: जी जी जी
2: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम अपने घर में लगा सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके?
3: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस संदर्भ में सरकार का बहुत, आयुष विभाग इस संदर्भ में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है और एक किचन गार्डन का कंसेप्ट आया है।
2: बिल्कुल।
3: जैसे कि इस संदर्भ में विशेष जानकारी के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का द्रव्यगुण विज्ञान विभाग है और उसी के बगल में ग्राम्य प्रबंधन का विभाग है, उसमें भी किचन गार्डनिंग की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। होता यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे किचन में तो सूखे द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि अदरक हुई सूखी सौंठ के रूप में प्रयुक्त होती है, काली मिर्च है, दालचीनी है, जीरा है, मेथी है, धनिया है, ये सब हम शुष्क रूप में प्रयुक्त करते हैं। यदि थोड़ा सा स्पेस हो जिसमें गमले में हम मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, सोया लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, और यदि हमारे पास स्थान अगर अधिक हो तो दालचीनी लगा सकते हैं, तेजपत्र लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, चिरायता लगा सकते हैं, वासा लगा सकते हैं, सबके अपने औषधीय महत्व हैं। और ये ऐसे द्रव्य हैं जिनका हम तुरंत प्रयोग करके घर में बैठे ही अपने उसका औषधीय लाभ ले सकते हैं, इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हठात नहीं पड़ेगी।
2: तो मतलब जो हम लोग किचन में मसाले यूज करते हैं वो भी एक
3: जड़ी बूटी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक जिसको हम रासायनिक रूप में प्रयोग करते हैं गुडुची गिलोय, जिसकी मांग इस कोविड काल में सबसे अधिक रही, उसको घर में हम गमले में लगा सकते हैं और वह एक परिवार के लिए वरदान के रूप में हमेशा प्रयुक्त होता रहेगा। और एक गिलोय लगाना अपने आप में पूरे परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है।
2: डॉक्टर साहब क्या ये इस जड़ी बूटियों का उपयोग करने से इम्यून सिस्टम पे कुछ प्रभाव पड़ता है?
3: जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अध्ययन किया गया है कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।
2: जी।
3: रोग से लड़ने के लिए शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। उनमें आपका ये जो तुलसी है, उसके अतिरिक्त गिलोय है,

0: अश्वगंधा है, कोविड काल में अश्वगंधा बहुत ही लाइमलाइट में थी, इस पर कोविड काल में अश्वगंधा पर बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए कि इसने कितना अच्छा रोल निभाया।
1: बिल्कुल, इसके उपयोग क्या कहाँ कहाँ हो सकता है।
0: जी जी,
1: और कोविड काल में तो हमने देखा ही
0: उपयोग। जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब मौसम बदलता है तो उस समय हम जानते हैं कि बीमारियां ज्यादा फैलती हैं
0: जी,
1: और ज्यादा लोग बीमार होते हैं, ऐसे में हम इन जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने आप को कैसे बचा सकते हैं?
0: देखिए, जहाँ तक मौसम के परिवर्तन की स्थिति होती है तो यह ऋतु चक्र है और ऋतु चक्र का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है
1: जी।
0: और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि कोई भी व्याधि जो है मंदाग्नि से ही उत्पन्न होती है, अर्थात आपके पाचन शक्ति के विगुणित होने अर्थात पाचन शक्ति के कम होने से रोगों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी पाचन शक्ति को नियंत्रित करके उसको रेगुलेट करके इन रोगों से बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में अग्नि को नियंत्रित करना या अग्नि को प्रज्वलित करना, इसके लिए जड़ी बूटियों में जैसे कि बताया गया है कि भोजन करने से पहले 15 मिनट पहले अदरक, उसमें सेंधव लवण और हल्का सा उसपे काली मिर्च का चूर्ण बुरक दें, उसको चूसें और 15 मिनट बाद भोजन करें।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी जो भूख है वो बनी रहेगी और आप खाएंगे तो वो उसका पाचन सम्यक रूप से होगा
1: जी।
0: ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मौसम परिवर्तन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको भूख नहीं है लेकिन अगर आप समय हो गया है तो भैया मुझे खाना है, तो इस कारण जब हम खाते हैं तो फिर वो उसका पचन सही नहीं होता, जब पचन सही नहीं होता तो धीरे धीरे एक साइकिल बनाता जाता है और व्याधियों की उत्पत्ति में वो कारण हो जाता है।
1: मतलब घड़ी देखकर नहीं, पेट
0: भूख
1: का इशारा हो
0: जी जी, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अगर आपको बताता है
1: जी जी
0: तो आप खाएं,
1: बिल्कुल
0: भले वो आपका समय हो या ना।
1: अच्छा, आमतौर पर हल्का बुखार हो जाता है या सर्दी या खांसी आने लगती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, इसमें थोड़ा कतराते हैं लोग क्योंकि हल्का बुखार रहता है या खांसी हल्की आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें किन जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए कि हमें इससे निजात मिल जाए?
0: जैसे अभी का सीजन जो चल रहा है उसमें बुखार और गले में खराश
1: जी,
0: सर्दी ये भी दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक रूप से जो है आयुष्क्वाथ, जो आयुष विभाग ने इसको रेकमेंड किया जो कोविड के दौरान भी बहुत ही फलीभूत हुआ,
1: मतलब काढ़ा।
0: हाँ, काढ़ा
1: जी,
0: बड़े छोटे छोटे उसके घटक द्रव्य हैं, उनका उपयोग करके जैसे काली मिर्च है, तुलसी है, दालचीनी है, गिलोय है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो इनका काढ़ा पिया जा सकता है
1: जी।
0: गले में खराश हो तो वैसी परिस्थिति में पानी में हल्दी डालकर उसको उबाल लें और उससे अगर गार्गल करें तो गले के जो इन्फेक्शन है उसको बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, उससे बहुत लाभ मिलता है। और ऐसे ही अगर भूख अच्छी लगती हो तो गिलोय का रस सुबह शाम लिया जा सकता है
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर के लिए पेट का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, पेट का स्वस्थ रहने का मतलब है कि पाचन शक्ति आपकी दुरुस्त होनी चाहिए
0: जी,
1: तो पाचन शक्ति हमारी दुरुस्त रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: पाचन शक्ति दुरुस्त हो उसके लिए पहला तो यह है कि हमें अपनी भूख का ज्ञान होना चाहिए
1: जी,
0: हमारी जो भूख है हम उससे अधिक न खाएं। कहा जाता है आयुर्वेद में त्रिविध कक्षीय एक अध्याय है, उसमें कहा गया है कि 3 हिस्सा खाना एक हिस्सा छोड़ना है, ताकि पेट का 3 हिस्सा भरा रहे एक हिस्सा खाली रहे, तो पचन की समस्या नहीं होती। उसके अतिरिक्त जैसा कि बताया सैंधव लवण में मिला हुआ अदरक का चूसना, उसके बाद अगर पचने में दिक्कत अगर होती है तो वैसी स्थिति में सौंफ का चबाना, और यदि अपच ऐसा हुआ कि पेट में धीरे धीरे दर्द सूल शुरू हो जाए तो अजवाइन का काढ़ा, ये एक बहुत ही सामान्य घरों में उपलब्ध होने वाली वस्तु है
1: जी।
0: यदि पेट में दर्द थोड़ा सा तेज हो जिसमें कि पेशेंट रोल करने लगे अर्थात वो कहे कि नहीं मुझे दर्द है, कंप्लेन जब करना शुरू कर दे, ऐसी स्थिति में अजवायन, उसके बाद काला नमक, थोड़ी सी हींग, हींग की मात्रा जो है एक काली मिर्च के हाफ, उस मात्रा में गर्म पानी से दे, सद्य आराम मिलता है। ये प्राथमिक उपचार है, लेकिन इसके बाद भी अगर पेट हल्का महसूस न हो तो चिकित्सकीय परामर्श लेने में कोताही नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, मतलब जब तक हल्का हल्का लगे और प्राइमरी ये चीजें लेने पे ठीक हो जाए तो नहीं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह में लेनी चाहिए,
0: उससे कभी बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए
1: जी
0: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी पेट दर्द होता है तो गैस की प्रॉब्लम भी होती है, उसे बोला
0: जी जी,
1: तो क्या हमारी जो घरेलू जड़ी बूटियां हैं गैस से भी निजात दिला सकती हैं?
0: जी हाँ, आपके घर में अनार होता है
1: जी,
0: तो अनार का अब एक नया ट्रेंड चला है कि अनार का जूस निकाल कर लोग पीते हैं, वह लाभकारी नहीं होता बल्कि उससे और गैस बनता है।
1: अच्छा,
0: तो लोग उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेकर के देखते हैं कि हम जूस पीते हैं, बेहतर यह है कि उसके बीजों को खाया जाए
1: जी,
0: जब चबा कर खाया जाता है तो उसके बीज जो होते हैं वो भूख लगाते हैं और भोजन को पचाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे ही काला नमक है,

0: अनारदाना है, सूंठ है, सुंठी, इनका जो चूर्ण है वह गैस से भी निजात दिलाता है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी जड़ी बूटी को का सेवन कर सकता है या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस होता है?
0: आयुर्वेद में दो प्रयोजन बताए गए हैं, एक स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और एक आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा अगर व्यक्ति रोगी हो गया है तो उसके रोग को नाश करना। ऐसी स्थिति में कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करती हैं, उनको रसायन कहते हैं, जिसमें अश्वगंधा, गिलोय, आमलकी अर्थात आंवला और गुरुज जिसको कहते हैं और अश्वगंधा, इस तरह की औषधियां आती हैं, ये रसायन कहलाती हैं। तो रसायन का प्रयोग बहुधा किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, यह निरापद होती हैं, लेकिन मात्रा और काल के अनुसार और चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार इसको लेना चाहिए। और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका रोगी या फिर जो व्यक्ति है उसकी अवस्था के अनुसार उसका प्रयोग करना और न करना उस पर डिपेंड करता है। जैसे हरिद्की के विषय में बताया गया, हरे के विषय में, कि गर्भिणी, बच्चे, जो दुबला पतला व्यक्ति हो और वृद्ध, इसको हरिद्की डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यह गर्हित है।
1: बिल्कुल, मतलब अगर आपको जड़ी बूटी सेवन में लाना है और अगर और आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो आपको चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही उपयोग में लाना।
0: हाँ हाँ, एक सामान्य सा एक कॉन्सेप्ट है, पब्लिक में एक मान्यता है, सामान्य जन यह समझते हैं कि ये जड़ी बूटी है, आयुर्वेद है, यह नुकसान नहीं करेगी।
1: जी।
0: तो देखिए, ऐसा है कि इस जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नुकसान नहीं करती।
1: जी।
0: जब तक युक्ति, मात्रा और काल इन सबका संयोग न हो और सही ढंग से उसकी योजना न की जाए तो कोई भी अच्छे से अच्छी चीज भी नुकसानदायक हो सकती है। अब जैसे हम ये चीज देखा जाता है, किसी को किसी चिकित्सक ने बता दिया और उसे लाभ हो गया, मैं ये चूर्ण ले रहा हूँ, मुझे लाभ हो रहा है, अब मैं इसको कंटिन्यू 6 महीने 7 महीने से कर रहा हूँ, इस तरह की भावना नहीं पालनी चाहिए। औषधि का एक मर्यादा होता है कि इतने दिनों में औषधि औषधि की तरह कार्य करती है, यदि हम उस काल के अतिरिक्त लंबे समय तक लेते हैं तो शरीर में आहार की तरह कार्य करने लगता है, उसमें औषधीय गुण आपका शरीर उससे अवशोषित नहीं कर पाता है, इसीलिए परामर्श आवश्यक है।
1: डॉक्टर अपूर्व प्रियदर्शी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, किचन गार्डन के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो नैना बहन देखा संदेश सुनलगर ओसे पहले सेहत का खजाना का कुंजी है जड़ी बूटी है विषय पर जो डॉक्टर अपूर्व प्रदर्शी रहलन है चिकित्सक उनसे अपन सचिन वर्मा कितना बढ़िया बातचीत कैला ना सुनल गए और गुनल भी गए तो धन्यवाद बनेला और धन्यवाद स्वरूप देखा देवदत्त त्रिपाठी जौन हुआ उनकर गावल मन फिर हो जाएगो
1: चलो सुन ले बन जाए।

0: नैना बहिन।
1: हाँ बता सर।
0: देखा है देवदत्त त्रिपाठी भैया कितना बढ़िया मन फिर सुनला ना। देखा चाहे सुख हो चाहे दुख हो मन फिर सुनला से ना अगर दुख बा तो मन हल्लुक हो जाला सुख रहला तो चार चांद लग जाला मन फिर में। लेकिन आगे भी सुनल जाई। लेकिन एक चीज यो कहब कि देखा हम लोगन जन कहिला अभी जड़ी बूटी के बात करत ली जा कि मतलब स्वस्थ रहे का एगो बढ़िया खजाना के रूप में बा वही तरह से देखा मतलब जन मोटा अनाज बा वो देखा कहीं ना कहीं हम लोगन के स्वस्थ रखे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। काहे कि मोटा अनाज जन बना शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे का एक अच्छा माध्यम है। और कृषि योजना जब भी हम लोगन अगर बनाई ना तो उनमें हम लोगन के कोशिश करे के चाहिए कि मोटा अनाज जरूर शामिल करें। काहे कि देखे मोटा अनाज के ज्यादा मेहनत भी नहीं करे के होला चाहे देखा ओकर खाद पानी के बात कर या फिर देखभाल के बात कर। जैसे देखा ज्वार बा बाजरा बा रागी है कोदो है सावा है कुटकी है इस सब देखा चीना है इस सब देखा मोटा अनाज के अगर हम लोगन सेवन करल जाए तो निश्चित तौर पे हम लोगन स्वस्थ रहल जाए। और देखे आज जानकारी भी शामिल बा यही से जुड़ल
1: कि सावा कोदो मोटे अनाजों की परंपरागत खेती है वा जो राजेंद्र सिंह गोढ़ जो आदिवासी कृषक हवा इनसे देखा अपन भोला भैया बातचीत के लिए हवा तो हम तो कहो कि बिना देर के लिए पहले ये जानकारी
0: बिल्कुल हम लोग बातचीत करते रह जाए। लेकिन एक जानकारी सुनने के बाद
2: दुधी ब्लॉक के कटौली गाँव से श्री राजेंद्र सिंह गोढ़ भैया हवन आप खेती करे के बड़ा पुरान अनुभव रखले हवन पुराने तकनीक से आप खेती भी करलन काका इनकर खेती करे के अनुभव बा आपके माध्यम से ही जानल जाए। तो राजेंद्र भैया आपके किसान बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत बा। ये बतावल जाए कि आप खेती काका कैले हवन इस समय
3: सावा मकई उर्दा मूंगफली
2: जी जी
3: यही सब जो है बोए हैं।
2: हाँ हाँ हाँ तो ये सावा भी आपके बहुत बढ़िया लगल देखात बा और मूंगफली भी।
3: हाँ हाँ
2: तो ये जोन बाकी हम थोड़े सा सावा के बारे में बतियाल चाहब आपके तो ये सावा के खेती करे खातिर कैसे आप तैयारी करलन।
3: भाई सावा खेती दो बार तीन बार तीन चार तो जोतते ही हैं बैल से।
2: अच्छा अच्छा
3: इसके बाद जो है बीज डाल देते हैं छीट देते हैं सावा का।
2: अच्छा अच्छा तो फिर छीट के फिर कैसे करें
3: पाटा मार देते हैं।
2: अच्छा
3: हाँ
2: विदहते नहीं हैं
3: विदहते हैं।
2: अच्छा दूसरा दिन
3: दूसरा दिन या उसी दिन भी विदह सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा मैंने सावा के नियम हो कि एक दिन जोत के बूंद
3: इसके बाद दूसरा
2: तो दूसरा दिन विदहे। हाँ,
3: हाँ,
2: अच्छा तो बढ़िया जमाव हो।
3: हाँ, बढ़िया जमा होता है।
2: तो सावा के अतिरिक्त और काका जैसे मेड़ो मिझरी वगैरह सब।
3: हाँ बोते तो हैं लेकिन इन साल नहीं बो पाए हैं क्योंकि बैल वैल हमारा था नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा
3: तो कुछ खेत छूट गया है इस वजह से पूरा खेती भी नहीं कर।
2: और उकर बगल में का बोले हो मार ले जोन बाकी बझौर लगल हो हमें
3: वो पियरकी बन है।
2: अच्छा अच्छा
3: हाँ, वो पूरा छा गया है
2: हमर बेल ना।
3: हाँ, हाँ।
2: अच्छा सावा में नहीं लगल और हमें लग गिल बा।
3: हाँ इसमें ऐसा है क्या है कि उधर का दूसरा का है।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और इधर का दूसरा का है।
2: जी जी जी
3: इसलिए उधर
2: नहीं, नहीं जोन बझौर वाला आपके बात बा हमारे जानकारी में भी चुकी आपे जैसा किसान भाई लोग बतावलन।
3: हाँ, हाँ।
2: कि जोन खेत में सावा बोआ जाए वो में बझौर हो नहीं सके जोन पियरका हो ना।
3: हाँ, हाँ।
2: हो नहीं सके और जहाँ तिल्ली बो दिलन तो हमें जोन बाकी आके लग जाए।

0: लेकिन आपके मूंगफली भी देखात बहन एक नंबर के जो है कि
1: हाँ,
0: मूंगफली की कैसे तैयारी कर लाना।
1: बस जैसे मकई का खेत तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसका मूंगफली का भी करते
0: तो
1: हैं।
0: कई चास जोती हैं।
1: उसको भी 2 बार 3 बार करके जोत देते हैं, कूड़ी
0: हाँ।
1: बना के बैल से।
0: तो मूंगफली आपके ज्यादा बढ़िया देखात बा और मकई तो पीरों देखात बा,
1: हाँ,
0: तो कैसे खेत के कुछ अंतर बाका आता।
1: भाई हो सकता है खेत का भी, और वो ऐसा है कि हम लोग खाद वाद भी नहीं मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ, जो
0: अच्छा
1: गोबर वोबर है
0: वही वाला
1: वही
0: रहेगा,
1: वाला से जो कुछ होता है।
0: तो ये खाए में तो बड़ा स्वाद लगत
1: हाँ,
0: है।
1: तो खाने में तो भाई टेस्ट आता है उसका
0: हाँ
1: कुछ
0: हाँ हाँ
1: अलग।
0: तो ये खाद वाला रासायनिक खाद जो डालल अनाज उत्पादन होला
1: हाँ
0: ओकरा खिले बना आप,
1: हाँ खाने के लिए तो खाए हैं।
0: और ये घरों को उपजावल खाद है वो,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: दोनों के स्वाद में कैसा अंतर बुझाला,
1: हाँ
0: का
1: अंतर तो बुझाएगा भाई।
0: बुझाला।
1: देखिए, हाईब्रिड का जो मकई है उसका कुछ और है, और इसका जो है अच्छा लगता है, मिठास लगता
0: अच्छा ये
1: है,
0: छुटका वाला जो घरे
1: छोटका
0: वाला
1: वाला।
0: है।
1: हाँ
0: और ये मूंगफली की बात चलत रहे हम लोग के,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मूंगफली मान लो 2-3 चास जोत के आप बोल, बड़ा सिरसिरुआ देखात बा, कैसे
1: हाँ
0: बोल रहे हो जो कि कुंड में का।
1: हाँ हाँ हाँ कुंड में हल से जोत
0: हाँ।
1: के कुंड बना के उसको डाले हैं।
0: तो इक्के कितना कितना दूरी पर डालन, एक एक डेग पर। हाँ
1: हाँ, एक डेग पर निमोट हाथ पर, मतलब
0: निमोट
1: इतने।
0: हाथ पर।
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: सही बात कहला, जैसे जैसे कदम आदमी
1: हाँ
0: रखी
1: हाँ
0: वैसे वैसे गिरावत जाए सेवटा।
1: सेवटा। हाँ, वही है।
0: नहीं जमावत बहुत बढ़िया बा आपके जोन बा, और लगत बा कि वो बैठी भी हुई इसने का।
1: हाँ, पिछले साल भी था, बढ़िया था। हाँ,
0: तो और ये हमें का का आप प्रयोग कर रहे मूंगफली में।
1: मूंगफली में अभी तो सिर्फ मूंगफली ही उसमें बोते हैं।
0: मतलब वो हमें और खादो वो कुछ डाला ना
1: नहीं,
0: कि,
1: खाद वो कुछ नहीं डाले हैं।
0: लेकिन बहुत बढ़िया लगल बा भाई है
1: हाँ,
0: गोबरे खाद से।
1: गोबर खाद है, और मार इधर उधर सब घास फूस रहता है ना, सब वहीं जला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ,
0: अच्छा अच्छा
1: इधर देखिए, इस इधर पेड़ है, इधर कुछ नहीं जलाए थे, इधर कुछ और है, उधर का पौधा देखिए कुछ और लग रहा है।
0: हाँ। वो में अगर सड़ा दिए तो और बढ़िया
1: हाँ,
0: भाई।
1: और होता है।
0: तो ये जोन बाकी अगर कोड़ाई उड़ाई भी करल उनका कितना दिन में लगभग।
1: महीना दिन के बाद जो है कोड़ाई भी चालू हो जाता है। एक बार उसको पूरा कोड़िया दे देते हैं,
0: कितना दिन में,
1: 1 महीने के बाद।
0: अच्छा 1 महीना में।
1: हाँ, और दोबारा में उसका थाला बांध देते हैं।
0: हाँ।
1: हाँ, किनारे किनारे।
0: अच्छा अच्छा जी वही
1: हाँ
0: बढ़िया से बैठे।
1: हाँ हाँ और नहीं बांधेंगे तो इसे उसमें बैठवे नहीं करेगा।
0: जी। तो ये तो वैसे देखा बा 1 बीघा के लगभग में हुई आपके जोन बाकी मूंगफली ना,
1: हाँ,
0: तो ये का करन मूंगफली आके फिर
1: खाते हैं कुछ कुछ, बाकी जो होता है बाजार में बेच देते हैं।
0: बाजार में बेच देते हैं, क्योंकि यो एक बढ़िया जोन बाकी मुनाफा
1: हाँ
0: कराला।
1: हाँ
0: तो ये जोन बाकी और सावा के का करन।
1: सामा देखिए, अभी तो जो खाते हैं खाते हैं, नहीं वो भी बेच देते हैं। अभी के समय में कुछ कम खाते हैं घर में।
0: अच्छा वो कुटे गस कटिका का से कुटा
1: हाँ,
0: लाई।
1: ये देखिए, वैसे मिल में भी कुटा जाता है मशीन से। हाँ,
0: हाँ।
1: लेकिन अभी हम लोग कुटवाए उटवाए नहीं हैं।
0: तो ये सवा कैसे किलो बिक जाला।
1: 15 रुपये 16 रुपया ये भी बिक जाता है। वैसे समय आता है तो 20 रुपये 25 रुपया भी होता है।
0: बताओ उनकी दवाई है एक तरह से है,
1: हाँ
0: तो ये दवाई दवाई बड़ा सस्ते बिक जात बा।
1: हाँ तो बिकी जा रहा
0: तो ओके चावल नहीं बनाते ना आप लोग,
1: बनाते हैं।
0: तो जिसे इतना मेहनत आप लोग करते हैं तो अगर चावल बनावे तो जो है कि भाई और कोई उपयोग करी अगर वैसे मिलबो करी हैं, तो ये मैंने समो बिक जाला।
1: हाँ, बिक जाता है।
0: और ये उर्दा।
1: हाँ, उर्दा भी है।
0: तो उर्दा के का कर लन जन बाकी।
1: उर्दा को दाल वाल खाते हैं अपना घर में।
0: अच्छा ये बेचे की जरूरत नहीं
1: हाँ,
0: पड़े,
1: बेचने की जरूरत नहीं पड़ता है।
0: तो ये आपके देसी उर्दा ये तो बड़ा चिकना एकर होला है, क्योंकि अगर स्वाद भी जोन बा ना भात में अगर जोन बाकी मिला दे तो का बढ़िया लटपटा चिकन लगेला है। हाँ। तो और तो ये पुरनका खेती मैंने छोड़ले नहीं खाना आप।
1: नहीं, छोड़े तो नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। पुराना वाला अभी
0: और धान,
1: धान भी जो है लगाए हैं, 5 क्यारी है,
0: तो धान नया वाला की,
1: नया है,
0: अच्छा
1: हाईब्रिड का।
0: हाइब्रिड के,
1: हाँ, पंथ 12।
0: अच्छा, तो बढ़िया उत्पादन हो जाला ओकरा,
1: हाँ, हो जाता है वो।
0: तो खाए पिए भर थोड़ा।
1: हाँ, खाने पीने भर हो
0: तो
1: जाता
0: ये
1: है।
0: पुरनका धान अब नहीं खान,
1: पुराना धान वाला तो हम 2 साल हो रहा है उसको छोड़ दिए।
0: कौन
1: पुराना
0: कौन धान पुराना बहुत रहना अब।
1: में एक ठो चैन घोड़ा है,
0: हाँ चनगोड़ा,
1: बूढ़ा देव,
0: अच्छा बूढ़ा देव भी
1: यही 2 का ज्यादा प्रयोग जो है।
0: आप लोग करत रहन,
1: हाँ,
0: तो अब वो खत्म हो गई बिया।
1: खत्म हो गए।
0: अच्छा तो ये दोनों के खा के आप देख ले हो चनगोड़ा बूढ़ा है और जोन बाकी ये जोन आजकल

0: हाइब्रिड होला,
1: हाँ हाँ
0: तो दोनों के धान में कौन स्वादगर लगला?
1: चैनगोड़ा ही अच्छा है उससे।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जवन
1: हाइब्रिड से, हाँ
0: हाइब्रिड से वो बढ़िया।
1: क्योंकि ये देहाती नस्ल का है ना, हाँ इसलिए
0: जी। और मिठास लगत हुई,
1: मिठास लगता है।
0: और माड़ो निकलत हुई
1: हाँ मार तो निकलता
0: अब
1: है,
0: एक देसी हाइब्रिड वाला
1: इसका भी निकलता है, लेकिन इसका मार पतला होता है, उसका पूरा एकदम गाढ़ा होता है।
0: गढ़ा होता है
1: हाँ
0: ना,
1: पीने में
0: चाहे तो
1: भी
0: माड़ो
1: उस,
0: भात खा लो।
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: नमक मिला के थोड़ के।
1: हाँ
0: जी। तो ये मतलब धान खीरा उरा फरल हो आपके?
1: अभी तो नहीं फरा है, लेकिन डाले हैं खीरा, पेड़ है पौधा
0: हाँ
1: मका
0: हाँ
1: में।
0: मका में
1: हाँ
0: वो अपने आप फरी वैसे।
1: हाँ फरेगा
0: पेहटा
1: उसमें,
0: होला कि नहीं?
1: पेहटा का भी पेड़ है लेकिन अभी फरा नहीं है, सब देख रहे हैं फूल रहा है।
0: अच्छा, तो पेहटा तो लगभग जौन ज्यादा खेती करत बा लोग उन के पेहटा उपजते नहीं खे रासायनिक दवा के चलते,
1: हाँ हाँ
0: और आपके यहाँ बात भाई बहुत बढ़िया बा।
1: हाँ
0: तो पेहटा कितना निकल जात हुई लगभग
1: खाने पीने भर निकल जाता
0: बेचे
1: है,
0: भर? नहीं
1: बेचने के लिए तो नहीं लेकिन खाने के लिए हो जाता है।
0: निकल जाता है
1: हाँ
0: तो पकले पर चुरा तो हुई।
1: हाँ हाँ पकले
0: ओकर
1: पर
0: कैसे कैसे आप देख रेख कर हटवा के? हाँ
1: देखिए, पेहटा कोई अलग से नहीं बोआ जाता है, ठीक ना, वो खेते में आप जो है जमा होता है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: वही फरने फूलने लगता है, उसको हम लोग जब पक जाता है
0: जी
1: तो तोड़ करके
0: हाँ।
1: पीसे पीस बना करके सुखा
0: अच्छा,
1: देते हैं।
0: काटेंगे चिड़ेंगे?
1: हाँ चीरेंगे उसको,
0: अच्छा, फिर सुखा देंगे
1: सुखा दें।
0: तो कहीं उसमें पानी वानी पड़ जाए तो नुकसान कर लगा?
1: हाँ नुकसान तो करता है।
0: अच्छा, कटला पर मैंने ध्यान
1: हाँ
0: देवे कि
1: हाँ देना पड़ेगा,
0: पानी ना पड़े,
1: हाँ
0: निकरिया हो जी।
1: करिया हो जाएगा।
0: अच्छा, तो स्वाद होकर कुछ बदल जाए
1: हाँ
0: भाई, और
1: हाँ
0: देखूँ मैं
1: देखूँ
0: तो
1: मैं।
0: ओके
1: हाँ
0: खालन कैसे?
1: भूज करके, हाँ
0: अच्छा,
1: भूज के,
0: भूज
1: हाँ
0: करके चटनी वगैरह?
1: नहीं वैसे पीसे जो है सूखा है ना, उसको
0: हाँ।
1: तावा में तसला में जो भी है उसको भून करके खाते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: बड़ा स्वाद है आओ
1: हाँ
0: के।
1: हाँ
0: बिल्कुल, बड़ी तो बढ़िया बात वाहन। तो पुरनका खेती लोग करें एक एक खातिर का कही है किसान लोग जी, ओकरा करे के चाहे कि छोड़ देवें? चूंकि
1: नहीं
0: आप
1: करना तो
0: बताओ,
1: चाहिए।
0: आप चूंकि बतावत रहन कि जौन चनगोड़ा के धान के भात खाएं ओकर और एकर में बड़ा स्वाद में अंतर। तो पुरनका करे के चाहे,
1: करना चाहिए।
0: उसे मन फायदा बा है, स्वस्थ आदमी के रखाला। का बात बा
1: हाँ नहीं,
0: ऐसने?
1: हाँ
0: हाँ। तो ये जोन बाकी दुधी बला के कटौली से राजेंद्र सिंह गोड़ भैया रहन, आप एकदम ही जोन बाकी आदिवासी बहुल क्षेत्र तो हल्ले हो लेकिन जंगल किनारे निवास करलन, और आपके खेती करे के तौर तरीका जौन बा पुरान विधि विधान ओ से आप करत हवन, और यही की वजह से आपके पुराना जितना भी खेती है हो रहा बा, साथ साथ पेहटा ये सब में जौन एकदम नहीं मिलत वो आपके खेत में मिलत बा। इतना अच्छा काम आप करत हवन पुराना विधि विधान से, इतना अच्छा काम खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नैना बहिन,
3: हाँ बता सर।
2: देखा कितना बढ़िया अनुभव राजेंद्र सिंह गोर जो उनके आदिवासी कृषक हुआ सावा कोदो के बारे में जानकारी दिलन, जो उनकी मोटा अनाज के परंपरागत खेती कर रहल हुवन। और सही बात बा कि देखा होला का ना कि लोग व्यावसायिक रूप अपनावे के चक्कर में ना, और खाद पानी जो रासायनिक खाद बा दे के अंधाधुन अपन माटी बीमार और अपन सेहत भी बीमार हो
3: बीमार
2: जाए।
3: बा।
2: लेकिन ये मोटा अनाज के देखा हर तरह से मतलब फायदेमंद बा, चाहे स्वास्थ्य कहला चाहे माटी कहला या फिर ये कहला कि जो मोटा अनाज बा अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। तो हम लोगन के देखा जहां से शुरू भई रहे वही फिर पहुंचत है जा,
3: पहुंचे थे
2: तो
3: जा।
2: हम लोगन के जरूर एक ज्यादा मात्रा में ज्यादा स्तर पे हम लोगन के एक चुने के चाहिए। और देखा अपन कृषि योजना जब भी बनाई तो मोटा अनाज के जरूर चुनी, और श्री अन्न देखा ये मोटा अनाज के कहल जाला, तो कहीं ना कहीं एकर महत्व भी उतने ज्यादा बा।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा यही के साथ है अपन जब मौसम का बात भइल है कि देखा में ना सामा कोदो में देखा ना बहुत अपन खाद पानी चाहला, पानी के भी
2: हाँ, नहीं
3: जरूरत नहीं
2: ज्यादा
3: पड़ेला।
2: देखभाल का जरूरत
3: हाँ,
2: होला। बिल्कुल
3: तो वही तरीके
2: बिल्कुल
3: से देखा है आज का मौसम है अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस हुआ।
2: बिल्कुल। और देखा जहाँ जमीन पे कोनो मतलब फसल नहीं उगत बा वहाँ मोटा अनाज थोड़ा सा देखभाल अगर कर दिया गल तो वहाँ भी
3: हाँ,
2: पैदावार होखेला,
3: अच्छा होगा,
2: और जलवायु परिवर्तन हो रहा बा ओमे भी कोनो पर ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देखे
3: असर
2: के
3: नहीं
2: मिलेला।
3: दिखाला।
2: तो बिल्कुल हम लोगन के थोड़ा ज्यादा मात्रा में कोशिश करी जाए, बाजार में तो एकर मांग बहुत ज्यादा बा। तो नैना बहन इतना बढ़िया जानकारी भेल तो मन फेर भी होके कि चाहे का कहत हो।
3: तो देखा मन फिर से पहले अपन बाबूलाल मौर भैया भी भेज ले हैं और आवर्षण से
2: तो के जानल जरूरी बा, जान लेल जाए।
3: तो देखा यह आलू लाल 1,000 से 1,100 रुपया कुंतल, आलू सफेद 900 से 1,000 रुपया कुंतल, प्याज 2,200 से 2,500 रुपया कुंतल, टमाटर 2,000 से 2,200।

0: रुपया कुंतल, नेनुआ 2022 रुपया कुंतल, कोहरा 1500 से 1800 रुपया कुंतल, कुनुरु 2022 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 1500 से 1600 रुपया कुंतल, गोल बैगन 2200 से 2500 रुपया कुंतल, परवल 6000 से 7000 रुपया कुंतल, लौकी 1800 से 2000 रुपया कुंतल, करेला 3500 से 4000 रुपया कुंतल, भिंडी 1000 से 1200 रुपया कुंतल, बोड़ा 2500 से 2800 रुपया कुंतल, मूली 2200 से 2500 रुपया कुंतल, लहसुन 14000 से 15000 रुपया कुंतल, धनिया 10000 से 12000 रुपया कुंतल, हरी मिर्च 6500 से 7000 रुपया कुंतल, अदरक 14000 से 15000 रुपया कुंतल, पालक 1800 से 2000 रुपया कुंतल, खीरा 1500 से 1800 रुपया कुंतल, मकई जो है 1000 से 1200 रुपया कुंतल, फूल गोभी 2200 से 2500 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी भी 2200 से 2500 रुपया प्रति सैकड़ा है, नींबू जवन हा 200 से 250 रुपया प्रति सैकड़ा है।
1: हा रापड़गंज मंडी के भाव जो की बाबूलाल मौर्य भैया भेजले रहला ना, इनके भी धन्यवाद देवल जाए। और चूंकि देखे सावन का पहला सोमवार है और सावन के महीना में कजरी ना हो ऐसा तो हो ही ना सकेला, तो देखे अपने देवदत्त त्रिपाठी भैया एक कजरी सुनावत हवन तो सुनल जाए।
0: चलो सुन लेवल जाए।

तो देखिए देवदत्त त्रिपाठी भैया कितना बढ़िया कजरी सुनौलन, और नैना बहिन देखा जैसे मन फेर सुन करके मन हरियर हो जाला ना, वही तरीके से देखा जन बचवा हवन अपने महतारी का दूध पी करके उनका तन मन हरियर रहेला, मने चोखा मने स्वस्थ रहेला। तो देखा उनके 6 महीना तक कम से कम महतारी के दूध पी आवे के चाही, और देखा 1 से 7 तक जन विश्व स्तन 5 सप्ताह मनावल जा रहा बा। एक पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य बा कि हर बचवा स्वस्थ होके, कहे कि आवे वाला जो समय बा ना भविष्य जोन भाई देश का कंधार और उनका जो कंधा पर जिम्मेदारी बा परिवार संभाले के चाहे जोन भी, तो जब तक खुद स्वस्थ ना

0: रही हैं बचवा तो कैसे परिवार का या फिर समाज का या देश का भार संभाल पाई हैं, तो हर महतारी के चाहिए। आजकल का देखा कुछ महतारी ऐसा सोचे नहीं कि बचवा के दूध पियाए तो हमारा शरीर खराब हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये बिल्कुल गलत सोच बा। अरे महतारी बनल तो बड़ा सौभाग्य के बात होला नैना बहिन, और बचवा जब जन्म लेला तो जीवन के सबसे बड़ खुशी मिलेला। तो ऐसा खुशी के आप एक छोटा ओछी सोच के अगर मान करके के ना अपनावत है तो कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराध एक बचवा के प्रति आप करत है। तो ये कहे के बा कि अपने भी स्वस्थ रहें, खान पियन अपन स्वस्थ रखें, और बचवा के भी अपने दूध के माध्यम से स्वस्थ रखें। और पहला दूध तो बचवन लोगन के अमृत के समान होला। और बिल्कुल तो यही मंशा के साथ कि सबके स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मौसम का आनंद ले। तो अब चलल जाए
1: तो सब पंचन के राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा के इस गीत को। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था वीजू शाह का। आकाशवाणी उबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म दहक।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म क्रिएचर के इस गीत को। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं देवदत्त त्रिपाठी। तो लीजिए सुनिए सबसे पहले इनके स्वर में पचरा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Oh,

0: आकाशवाणी उपरा से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं देवदत्त त्रिपाठी। अभी आप सुन रहे थे इनके स्वर में निर्गुण, अब लीजिए सुनिए इनके स्वर में छपरैया।
1: जहिया

अभी आप सुन रहे थे देवदत्त त्रिपाठी के स्वर में छप रहिया। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। अब से कुछ देर में यानी शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ಹಾಡೆ
1: कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए।
4: इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
3: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
5: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे न, कोई रूठे न, कोई टूटे न, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
3: लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं।
6: नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िये कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
7: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिव महय उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िये, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
3: इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडर ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चहलुंग के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूलभुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
9: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
10: नहीं।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारी ना।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना।
5: और ये मेरी गुड़िया की ना।
7: कोई दादी
6: हाँ?
7: आपके नाम?
8: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
8: आरबीआई कहता है?
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मंजिल के इस गीत को। संगीत आरटी बर्मन का।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चश्मे बद्दूर के इस गीत को। आकाशवाणी उपरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। अब लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म सत्या के इस गीत को।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल, क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक

होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को देश उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजेपी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है।
उन्होंने कहा कि मूल विधेयक

0: 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: एक सौ दो दशमलव सात FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी गीत।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गीत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ देर में यानी रात्रि 8:20 पर हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा।

0: सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलम बदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलम बदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलम बदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और पांचवी बार निर्वाचित होकर आए थे। आजमगढ़ के निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित आलम बदी उम्र के इस पड़ाव में भी राजनीतिक सक्रियता बनाए हुए थे। 90 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन निर्विवाद छवि वाला रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित वंचित लोगों के उत्थान में लगाया। वे सदन में हमेशा इसी वर्ग की आवाज उठाते थे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अपनी पार्टी का सदस्य होने के नाते उनसे अक्सर मिलना होता था। वे इस बार भी चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े थे। राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी उन्होंने काफी काम किया। अपना दल के सदस्य रामनिवास वर्मा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के लिए आलम बदी ने काफी कार्य किया। राजनीतिक होने के साथ उनमें समर्पण की भी भावना थी। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन के वरिष्ठ और वयोवृद्ध सदस्य आलम बदी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से इस सदन ने एक कर्मठ सदस्य को खो दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सदस्य संजय निषाद और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। जनसत्ता दल के सदस्य विनोद सरोज ने भी आलम बदी के निधन पर सदन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलीय नेताओं के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आलम बदी के निधन पर वे उनके गाँव भी गए थे। उनका रहन सहन काफी सामान्य था। वे सदन में हमेशा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते थे। आज ही विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्व विधायक भोला पांडे, अमिताभ लवानिया, जगन्नाथ चौधरी, राम प्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, भगवत दयाल, अरुण कुमार मुन्ना, ओमवती, मोहर सिंह, अफसर यू आजाद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओंकार सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी और हनुमंत सिंह के निधन की सूचना देते हुए शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना के साथ पूर्व सदस्यों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व में ये परंपरा रही है कि जिस दिन किसी वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना दी जाती है उस दिन पूर्व सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई दृष्टांत हैं, इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
0: ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
1: विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर सरकार को घेरा और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना जिसे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। सदन में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल

0: सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही विजय बहादुर पाठक ने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध ढंग से कब्जे से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण की गति धीमे है, जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों और गरीबों पर पड़ रहा है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप ने कहा कि मंदिरों में लोगों की आस्था है, चोरी पकड़ में आ गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मुकुल यादव ने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, दान की वस्तु सामग्री का हरण करना पाप होता है। सरकार और पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है, सिर्फ छोटे लोगों के विरुद्ध काम चलाओ कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 12 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जबकि 3 यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार द्वारा सशक्त और निष्पक्ष जांच न होने से लोगों में चोरी की घटना के प्रति रोष है। जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। लंबे संघर्ष के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हुआ है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना है, जिसे आने वाली पीढ़ियां देख सकेंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। सरकार का जवाब शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष समेत सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में डटे रहे। तब सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के स्थगन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे और नेता सदन ने सरकार का पक्ष रखा, हालांकि शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था की है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं और कोई टूटे नहीं, इसका सरकार ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस दौरान कुछ देर के लिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।

नी ओबरा का प्रसारण रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे पपॉन की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी उपलब्ध इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे शुभा मुद्गल की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी उपरा से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए सोनू निगम की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना।

0: सोनू निगम के गाए इसी गाने के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं

0: जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए

0: उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
5: एएफएचक्यू कैडर।

0: साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो की एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डी के

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म काला बाजार के इस गीत को। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में गुलजार के लिखे इस गीत को फिल्म अनुभव से, संगीत कनु रॉय का था। इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अब लीजिए सुनिए ए आर रहमान की।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की आवाज में फिल्म सैयारा के इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की आवाज़ में राज शेखर के लिखे इस गीत को। संगीत विशाल शेखर का था और संगीत विशाल मिश्रा का था और फिल्म का नाम था सैयारा। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अरिजीत सिंह की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म धुरंधर के इस गीत को।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म धुरंधर के इस गीत को। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो।

0: फटा पोस्टर निकला हीरो। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को। संगीत प्रीतम का था। आकाशवाणी उभरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए सचेत टंडन की आवाज में फिल्म जर्सी के इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में फिल्म जर्सी के इस गीत को। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत म्यूजिक गैलरी। और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। तो श्रोताओं, बिना देर किए आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे पहले श्रोताओं के नाम को।

हमारे पास जिनकी जिनका ईमेल आया है उनके नाम है हीरामणि वर्मा। इन्होंने अपने ईमेल में हमें सप्रेम नमस्कार भी लिखा है। हीरामणि वर्मा जी, आपको भी हमारी तरफ से, आकाशवाणी ओबरा की तरफ से सप्रेम नमस्कार। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है

रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ और लोगों ने भेजा है, उनके नाम है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। इनकी फरमाइश है फिल्म दीवाना के इस गीत के लिए, और गीत है पायलिया, कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज में। तो श्रोताओं, लीजिए, आपकी फरमाइश पे प्रस्तुत है फिल्म दीवाना का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना के इस गीत को। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित कार्यक्रम, ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। तो दोस्तों, श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जो अगली कड़ी में जो ईमेल आया है वो आया है उत्तम सिंह जंगेल जी का, और इन्होंने भेजा है हमें ये कोहका भिलाई से। इनके साथ हैं मोरस जंगेल, आयुष जंगेल, अनिल कुमार, नंदिनी जंगेल, अजीत कुमार, और इनके साथ में धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने। श्रोताओं, आपको बता दें कि इनके एक नहीं ढेर सारे ईमेल हमारे पास आए हैं, यानी आकाशवाणी ओबरा के पास इनके ढेर सारे ईमेल आए हैं। उत्तम सिंह जंगेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फरमाइश है फिल्म प्रेम पर्वत जो 1973 में आई थी, इस फिल्म के गीत के लिए लता मंगेशकर की आवाज में। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में, और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल आया है वो आया है संबलपुर कांकेर से। ईमेल भेजने वाले श्रोता हैं फागुराम यादव जी, और इनका एक नहीं कई ईमेल हमारे पास आया है। और इन्होंने अपने ईमेल में सबसे पहले लिखा है, सब प्रेम नमस्कार। फागुराम यादव जी, आपको भी हमारी तरफ से सब प्रेम नमस्कार। ऐसे ही हमें ईमेल भेजते रहें, अपना प्यार भेजते रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फरमाइश है फिल्म एक फूल दो माली के इस गीत के लिए। और इनके साथ ईमेल में नाम है वो है ज्योति यादव जी, ओजस्वी यादव। तो श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म एक फूल दो माली के इस गीत को।

आशा भोसले की आवाज में ये था फिल्म एक फूल दो माली का गीत। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत था रवि का। आकाशवाणी उबरस इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और अगला ईमेल जो आया है उन्होंने हमें लिखा है आदरणीय प्रोग्राम प्रसारक साहिबा जी को गगनदीप थांदी का स्नेह भरा नमस्कार। गगनदीप थांबी जी आपको भी हमारी तरफ से स्नेह भरा नमस्कार। आपने हमें ईमेल किया है गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से। गगनदीप थांदी जी आपका ढेर सारा आपको धन्यवाद। और आपकी फरमाइश है फिल्म वंदना के इस गीत के लिए लता मंगेशकर की आवाज में। और आपके साथ जिन्होंने हमें ईमेल किया है वो है तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। श्रोताओं आप सभी का आभार और धन्यवाद। ऐसे ही हमें ईमेल भेजते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। अब लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म वंदना का ये गीत।

आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। श्रोताओं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, गीतों के माध्यम से हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com। ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, और ये कार्यक्रम और आकाशवाणी ओबरा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम में जो अगला ईमेल आया है वो भेजा है सुरेश जायसवाल जी ने, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। इनके साथ जो हैं वो हैं उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। इनकी फरमाइश है फिल्म जीवन मृत्यु के इस गीत के लिए। तो सुरेश जायसवाल जी, लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गाना।

तो हमारे म्यूजिक गैलरी पर भी सावन का असर पड़ ही रहा है। सुरेश जायसवाल जी, उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आया होगा। तो श्रोताओं, चलिए अब चलते हैं अगले ईमेल की तरफ। और अगला ईमेल आया है अनिल बी खोटके जी का। इनकी फरमाइश है फिल्म इश्क के इस गीत के लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, और इनके साथ श्रोताओं के नाम हैं एक रिश्ता, रेडियो श्रोता संघ, अम्बही, तहसील सिल्लोड, जिला छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ये ईमेल हमें बहुत ही दूर से आया है और इनके साथ श्रोताओं के नाम हैं अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता घोटके, वैशाली अनिल, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके। तो श्रोताओं, आपका ईमेल भेजने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद। अब लीजिए, सुनिए आपके फरमाइश पर फिल्म इश्क के इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी उबरा से प्रसारित आपका अपना कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म इश्क के इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, और इसकी फरमाइश की थी अनिल बी घोटके जी ने। तो अनिल बी घोटके जी, उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आया होगा और आज का ये कार्यक्रम भी आपको पसंद आ रहा होगा, और ऐसे ही आगे भी आप हमें ईमेल भेजते रहेंगे। और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक गैलरी, इस कार्यक्रम में जो अगला ईमेल आया है वो भेजा है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी ने। इन्होंने हमें ईमेल किया है गांव फरासी जिला हिसार से, और इनकी फरमाइश है फिल्म अनजाना का ये गाना। राजकुमार डूडी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही हमें ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश भेजते रहिए। अब लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गाना।

गाना तो बहुत ही अच्छा पसंद किया राजकुमार डूडे जी ने। फिल्म अनजाना और गीत के बोल थे वो कौन है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गाना राजकुमार डूडे जी हमको भी बहुत पसंद आया। ऐसे ही फरमाइशी गीतों के लिए ईमेल करते रहिएगा। श्रोताओं एक बार फिर से आपको बता दें, आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। अगला ईमेल जो आया है वो भेजा है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान रामसरा वाले और समस्त सोनगरा परिवार, ग्राम पंचायत सिरसला, फवारा चौक, जिला चुरू, राजस्थान से। श्रोताओं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने दूर से हमें ईमेल भेजने के लिए। और आपकी फरमाइश है फिल्म सिंदूर के इस गीत के लिए बोल है पतझड़ सावन बसंत बहार। गायक हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: संदीप सिंह सोनग्रा जी, उम्मीद है आपको अपनी पसंद का ये गाना सुनकर बेहद खुशी होगी और हमें भी खुशी हो रही है आप सभी श्रोताओं से जुड़कर। श्रोताओं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, गीतों के माध्यम से हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है akashwaniobra@gmail.com। श्रोताओं, अपने विचार हमसे साझा करें और अपने पसंद के गाने सुनने के लिए हमें ईमेल करें। फरमाइशी गीतों के लिए ईमेल में अपना नाम और पता अवश्य साझा करें। श्रोताओं, एक बार फिर से आपको बता दें कि ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, और ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी समाप्त करने की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हम फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। प्रस्तुति थी प्रीति सिन्हा की और प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार

0: की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।